इस वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोल शशि के।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

0: 92.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला
1: 92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। जी श्रोताओ, कन तुहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला किनिशुतो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया किनिश सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गुंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठ तो तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

ए तुहां सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिश्चितो तुहां सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तुहां सारे इये ही बनी रिया कनिश्चित सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला किनिशुतो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये ही बनी रिया किनिश सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ये तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तुहां सारे ई बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्म।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाएं। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

संगीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ, गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

नमस्कार इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास समाचार बुलेटिन रचिता के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एक लॉन्च। हिमाचल में अब ड्रेनेज सिस्टम से सुरक्षित होंगे रोग। बिना कारण बताए प्रशिक्षण संस्थान की एनओसी रोकना गैर कानूनी। कृषि सीजन में बीबीजी रामजी के तहत काम नहीं होंगे। इसी के साथ आइए अब समाचार सुनते हैं विस्तार से। कांगड़ा जिला में आगामी तीन दिनों तक बारिश के ऑरेंज तथा रेड अलर्ट के मद्देनजर उपायुक्त की अध्यक्षता में हाई लेवल वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। जिला में भारी बारिश के चलते किसी प्रकार के जानी मानी नुकसान ना हो प्रशासन इसके लिए पूर्ण रूप से तैयारी में जुटा है। उन्होंने जिलावासियों से भी आग्रह किया है कि रेड अलर्ट एवं बरसात के मौसम के चलते कोई भी व्यक्ति नदी नालों व जोखिम भरे क्षेत्रों के नजदीक न जाए ताकि किसी भी प्रकार का कोई नुकसान मानव जीवन को ना हो। उनका कहना है कि गत वर्षों में बारिश से भारी नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। सभी समस्त प्रशासनिक अधिकारी व संबंधित विभाग किसी भी विकटतम परिस्थिति से पार पाने के लिए अपने से संबंधित मशीनरी व मैन पावर को तैयार रखें। जिला एवं उपमंडल स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम को 2400 घंटे एक्टिव रखा जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त हेमराज वैरवा ने जिलावासियों से आग्रह किया है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में तत्काल जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों को हिमाचल प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा, प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश के सर्वोत्तम गंतव्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने शनिवार देर शाम द इंस एंटरप्रेन्योरशिप चंडीगढ़ द्वारा आयोजित चंडीगढ़ लीडरशिप कॉन्क्लेव एवं 23वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2400 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है जिसके तहत बिजली दरों को कम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक और जलवायु संबंधी प्रतिकूलताओं के कारण इन क्षेत्रों में विकास संबंधी गतिविधियां चुनौतियों से भरी रहती हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और भरमौर जैसे दुर्गम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम आबादी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और लंबे समय तक रहने वाली बर्फबारी विकास कार्यों तथा जन सेवाओं की पहुँच को चुनौतीपूर्ण बनाती रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जनजातीय विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, आजीविका, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलवाने के उद्देश्य से सरकार नवीन कदम उठा रही है। इस क्रम में राज्य सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट थ्री प्रोडक्ट कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को विशेष पहचान दिलाने तथा स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर सृजित करने के प्रयासों की गति प्रदान की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक जिले से तीन तीन उत्पादों सहित प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 18 जुलाई 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। देश के पहले प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस के अंतरिक्ष में परचम लहराते हुए अपने रॉकेट विक्रम 1 पर सफल परीक्षण पूरा कर लिया।

से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। प्रदेश में कृषि सीजन के दौरान बीबीजी रामजी योजना के तहत होने वाले काम नहीं होंगे। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि सीजन के दिनों को अधिसूचित कर दिया है। इन दिनों में योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा और वे अपनी खेती कर सकेंगे। कृषि सीजन 60 दिन का होगा, जिसे ग्रामीण विकास विभाग ने अलग अलग सीजन के हिसाब से बांटा है ताकि मजदूरों को नुकसान न हो। कृषि विभाग ने कृषि सीजन को अधिसूचित कर दिया है और प्रदेश के सभी जिलों में खंड स्तर पर उसी हिसाब से रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ हिमाचल ने राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान कायम रखी है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स PGID 2025-26 में प्रदेश के 6 जिले उत्तम 3 श्रेणी में आए हैं। यूडाइस रिपोर्ट में भी हिमाचल की सफलता सामने आई है। प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए सख्त कदम व स्कूलों में निगरानी बढ़ने के कारण ही हिमाचल शिक्षा में पड़ोसी राज्यों से आगे निकला है। स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली को बेहतर तरीके से लागू किया है। वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के साथ लगते प्राथमिक माध्यमिक व उच्च स्कूलों को जोड़ा गया, इससे स्कूलों में निगरानी बढ़ी। प्रदेश के कुल 36 उत्पादों का चयन उनकी आर्थिक संभावनाओं, बाजार में मांग तथा स्थानीय महत्व के व्यापक आकलन के आधार पर किया गया है, जिसमें बिलासपुर से अदरक, रेशम उत्पादन और मत्स्य पालन, चंबा से चंबा चप्पल, सफेद मक्की और ऊन, हमीरपुर से हल्दी, बांस और मक्की, कांगड़ा से कांगड़ा चाय, कांगड़ा लघु चित्रकला और गिलोय, किन्नौर से हिमाचली चिल्ली तेल, किन्नौरी शॉल और चिलगोजा, कुल्लू से ट्राउट मछली, हेम्प ऑयल और कुल्लू टॉपी, लाहौल स्पीति से सी वक्थौर, पुल्ले और हरी मटर, मंडी से सेकू बड़ी, धातु शिल्प तथा पत्थर या लकड़ी की नकाशी, शिमला से सेब आधारित उत्पाद, स्थानीय शहद, जौ का माल्ट एवं आटा तथा गुच्छी, मशरूम, सिरमौर से लहसुन अदरक और सिरमौरी लोइया, सोलन से मशरूम, टमाटर और औषधि उत्पाद तथा ऊन से आलू, लीची और ड्रैगन फ्रूट शामिल है। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो, वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
3: पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कर।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अरे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या? हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ।

श्रोताओं, क्षमा चाहती हूँ आप सभी को, मैंने थोड़ा सा इंतजार करवाया, बस जस्ट कुछ सेकेंड्स का। और हमें पता है कि हमारे प्यारे प्यारे श्रोता जो हैं वो हमें क्षमा कर भी देंगे। चलिए, स्टूडियो पहुंच गई हूँ मैं, 91.2 FM रेडियो गुंजन, धर्म

आज हम पहुंच गए हैं 20 जुलाई में और दिन है सोमवार का। आज है सावन महीने का पहला सोमवार और बाहर हो रही है रिमझिम फुहार। तो सावन महीने के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत मुबारक हो और उन सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत मुबारक जो कि किसी न किसी खास वजह से आज का अपना ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। देखिए कैसे दिन निकलते चले जाते हैं और हम बदलते चले जाते हैं। मौसम हम नहीं बदलते लेकिन मौसम खुद ही खुद को बदलता चला जाता है। कितनी गर्मी थी और अब जब बारिशें हो रही हैं, बरसात शुरू हो गई है प्रॉपर वाली, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें ठंड भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। अभी तो हम लोग तो एसी रूम के साथ में बैठे हैं ना, इसलिए हमें तो ज़्यादा ठंड लग रही है। देखा फिर आप लोगों को तक प्रोग्राम पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमको भी। पर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे श्रोता मेहनत नहीं करते। भाई देखो, चाहे कैसा भी मौसम हो, अपने अपने कामों पर तो वो जी जान लगा करके पहुंचते ही हैं, तो कभी भी बहाना नहीं बनाते। और बिल्कुल वैसे ही हम भी कोई बहाना नहीं बनाते हैं और मिलने चले आते हैं आप लोगों से अपने अपने समय के।

हम भी अब अपने समय के मुताबिक आपको गीत भी सुनवा देते हैं, वरना आप बोलेंगे कि बस बातें ही करते रहते हैं। देखिए श्रोताओं, कुछ भी बोलने से पहले ना मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आने वाले कुछ ही दिनों में, यानी कि कल नहीं परसों, एक ऐसा दिवस है हमारा जिसमें कि हम अपने तिरंगे को अंगीकार करते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि वो हमारा तिरंगा दिवस है। तो एक बड़ा ही खूबसूरत सा गीत योद्धा फिल्म से लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम देशभक्ति गीत से और अपने तिरंगे के सम्मान में।

सारे वो दिन याद होंगे जब बचपन में आप लोगों को स्कूल की तरफ से तिरंगे के सम्मान में या किसी भी ऐसे दिवस में जब 15 अगस्त का समय होता था या 26 जनवरी का, तो अक्सर उस समय जब तिरंगा फहराया जाता था तो बरसात जैसी अभी बाहर लगी है ना रिमझिम फुहार, वैसी ही होती थी। और हमारे मन में कितनी भावना होती थी ना कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हमने ये फंक्शन, ये जो हमारा देश का गौरव दिन है, इसे अटेंड करना ही है, यहाँ पर हमने बस खड़े रहना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो यादें दिल में ऐसी रची बसी होती है ना, और उस समय तो गूज बम्स भी आते हैं, मतलब हमारे रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं कि देखिए भगवान भी कैसी परीक्षा ले रहा है, रिमझिम फुहार भी लगाई हुई है, लेकिन हमें जी जान से अपने देश के जो गौरव दिन होते हैं उनका सम्मान करना ही है। और ऐसा ही जज्बा अगर हमारे अंदर रोज़ रोज़ रहे, जहाँ पर भी कुछ भी ऐसा हमें दिखता है जो कि किसी भी वजह से हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए वो अच्छा नहीं है, तो हमें वहाँ पर बोलना भी चाहिए। आखिरकार हम लोगों ने चुप्पी क्यों साध ली है आजकल, हम क्यों इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हमें अपने अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मैं तो जब मॉर्निंग में स्टूडियो की तरफ आती हूँ तो भी मुझे बहुत कुछ दिखता है, शाम को जब मैं छुट्टी करके जाती हूँ, मतलब जब शाम की ड्यूटी से वापस, तो भी मुझे बहुत कुछ दिखता है। और मैं बोलती भी हूँ कई बार यहाँ पर, मैं बताती भी हूँ कि इस तरह से है वैसे है, लेकिन कई बार मैं लोगों को रोक रोक करके उस चीज़ के लिए बोलती भी हूँ। लेकिन बोल हम तभी सकते हैं जब हम खुद उन बातों पर अमल करते हों, ऐसा मेरा मानना है। कितना अच्छा होगा ना कि पहले तो हम खुद अपने आप की तरफ देखें और फिर बाहर की तरफ। बिल्कुल, अब हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, झांक रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि मौसम की बात करेंगे। जी हाँ, धर्मशाला में भारी बारिश का अनुमान है आज, और मौसम विभाग ने यहाँ के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस जाने की उम्मीद है और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहने वाला है, यानी कि गर्मी में कमी नहीं होगी। लगातार हो रही बारिश के कारण कांगड़ा और धर्मशाला की ऊंचाई वाले इलाकों में भूस्खलन और जल भराव का खतरा बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों को, आम जनता को सुरक्षित स्थानों पर रहने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। तो प्रशासन जो भी दिशा निर्देश जारी करता है उसके अनुसार ही सब लोगों को कार्य करना चाहिए भाई। अगर आप लोगों के भी कोई रिश्तेदार इत्यादि इस तरफ को आना चाहते हो तो उन्हें भी आप बड़ी शालीनता से, बड़े आराम से बता सकते हैं कि हमारे यहाँ का मौसम इस तरह का है और शायद रास्ते में सड़कें भी नहीं ठीक हैं, सुरक्षित नहीं हैं, तो आप देख लीजिए, अपना सावधानी से आइए ज़रूर, लेकिन सावधानी ज़रूर बरतिए, तो ऐसे में पुनाराज भी नहीं होंगे और ये भी समझ जाएंगे कि आपको उनकी चिंता भी है।

और एक और जरूरी खबर आपको बता देते हैं कि किन्नौर में फ्लैश फ्लड, चंबा में परियोजनाओं की निर्माण सामग्री बह गई है और दो जगह पे बादल फटा है। तुम्बरखड में अचानक बाढ़ आने से चितकुल दुमती को जोड़ने वाला पुल बह गया है। सीमावर्ती क्षेत्र से संपर्क टूट गया है। भरमौर पठानकोट हाईवे और शिमला नौणी फोर लेन पर भूस्खलन हो गया है और अगले दो दिन भी भारी बारिश का अलर्ट बिल्कुल जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 जुलाई को जारी रेड अलर्ट के अनुसार चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है, जबकि 21 जुलाई को जारी हुए रेड अलर्ट के तहत चंबा, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। और इसके साथ ही 22 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट तथा 23 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी के चलते कांगड़ा और सिरमौर में आज और कल बंद रहेंगे सभी शैक्षणिक संस्थान। और ये जो खबर है ये तो डीसी की तरफ से आप लोगों के फ़ोन उस पर आ ही जाती होगी, तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा अभी तक। तो वैसे तो सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हैं, लेकिन जिन स्कूलों में नहीं भी हैं उनके लिए भी ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चलिए अब एक और खूबसूरत गीत सुन लेते हैं और फिर बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे।

0: श्रोताओं, अब हम चलेंगे प्रादेशिक समाचारों के लिए आकाशवाणी के शिमला केंद्र।
1: पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मोहर लगने की संभावना। संसद का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू, सरकार ने विपक्ष से सहयोग का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा सहयोग के बावजूद केंद्र को कोसने में मुख्यमंत्री व्यस्त। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। 4 जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने का आह्वान किया है। चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश निवेश की दृष्टि से देश के सर्वोत्तम गंतव्यों में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तीव्र गति से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आईटी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है और राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक नीति में भी आवश्यक संशोधन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है और भविष्य में सभी जिला मुख्यालयों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में मुख्यमंत्री की बजट व विभिन्न स्थानों पर की गई घोषणाओं पर निर्णय होगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने व CBSE शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े विषय पर भी चर्चा होने की संभावना है। मॉनसून से निपटने की तैयारियों सहित MIS पर सेब खरीद की व्यवस्था में बदलाव के प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा होगी। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। 25 दिनों के इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में 40 राजनीतिक दलों के 50 से अधिक नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सभी राजनीतिक दलों से मुख्य मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा में भागीदारी करने और संसद की निर्बाध कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
2: कोई पार्टी या कोई मेंबर अपना जो भी बात रखना चाहता है पार्लियामेंट में पूरा रख सकते हैं। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं कि पहले में भी पार्लियामेंट को काफी चलाने में दिक्कत आई थी क्योंकि हंगामा बहुत ज्यादा हुआ था। हंगामा होने से कोई लाभ नहीं होता है और लोग पसंद नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। इसलिए मैं फिर से सब पार्टी के नेताओं को मैं अनुरोध करता हूं कि पार्लियामेंट अच्छी तरह से चले, इसमें सब लोग योगदान करें और हम भी विपक्ष के बात सुनेंगे और विपक्ष भी हमारे बात सुने।
1: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सहयोग के बावजूद राज्य सरकार द्वारा केंद्र की आलोचना करना हास्यास्पद है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनेक योजनाएं केंद्र के सहयोग से चल रही हैं, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आभार जताने के बजाय केंद्र सरकार को कोसने में व्यस्त हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 320 मेडिकल PG की सीटें बढ़ाई गई हैं, जिसमें प्रति सीट केंद्र सरकार 1.5 करोड़ जबकि कुल 480 करोड़ रुपए दे रही है। उन्होंने कहा कि जीका परियोजना के तहत कुल ऋण का 90% केंद्र सरकार द्वारा चुकाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जिला शिमला के हर ब्लॉक में भी आदर्श गांव विकसित किए जा रहे हैं। इन गांवों में किसानों को रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों पर निर्भरता कम कर प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
3: जिला के हर खंड में एक गांव चिन्हित किया जाएगा, जबकि टूटू खंड में 2 मॉडल विलेज स्थापित किए जाएंगे। इन मॉडल विलेज में कृषि, उद्यान, मत्स्य और पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का संयुक्त लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जाएगा। मॉडल विलेज में किसानों के खेतों पर प्राकृतिक खेती के प्रदर्शन प्लॉट विकसित किए जाएंगे, जहां जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत और अन्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। इससे आसपास के किसान भी इन तकनीकों को सीखकर अपने खेतों में अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत विकसित होने वाले मॉडल विलेज प्राकृतिक खेती के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। यह पहल आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ कृषि व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता के चलते राजधानी शिमला सहित अन्य भागों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक विभिन्न जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
4: बीते 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 82.2 मिलीमीटर वर्षा जिला कांगड़ा के धर्मशाला में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तथा बिलासपुर, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान भूस्खलन, अचानक बाढ़ आने और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को नदी नालों तथा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते कांगड़ा, चंबा, मंडी और सिरमौर जिला प्रशासन ने आज सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा मंडी व कांगड़ा जिला के शिक्षण संस्थान कल भी बंद रहेंगे। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर किन्नौर जिला में कड़छम बांध में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। परियोजना प्रबंधन के अनुसार कभी भी बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है। इसके मद्देनजर लोगों से सतलुज नदी से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई है। सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार जाने के लिए नौहराधार चापधार सड़कें बन जाने से श्रद्धालुओं को चूड़धार पहुंचने में और आसानी होगी। हमारे सिरमौर जिला संवाददाता ने बताया कि इस सड़क को औपचारिक रूप से पास कर दिया गया है।
5: कई राज्यों के लोगों की आस्था का केंद्र शिरगुल स्थली चूड़धार पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल चूड़धार जाने के लिए नौहराधार से चापधार तक जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इसे औपचारिक रूप से पास भी कर दिया गया है। सड़क की पासिंग के बाद नौहराधार चापधार मार्ग के अंतिम छोर तक बस का सफल ट्रायल किया गया है। अब इस मार्ग पर जल्द नियमित बस सेवा शुरू होने की भी उम्मीद है, जिससे चापधार क्षेत्र के ग्रामीणों और चूड़धार जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी। 8 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर करीब 8 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिरमौर से सतीश शर्मा।
1: विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि धर्मशाला में दूषित पेयजल व पीलिया के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। धर्मशाला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पीलिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और मरीजों को जोनल अस्पताल की बजाय टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल भंडारण टैंकों की सफाई व्यवस्था भी बदहाल है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखा है, सभी जिला मुख्यालयों के लिए शुरू की जाएंगी हेलीकॉप्टर सेवाएं। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, हिमाचल में करें निवेश, उद्योगों को सस्ती बिजली उपलब्ध करवाएगी सरकार। सतलुज जल विद्युत निगम का 3 प्रोजेक्टों पर 6,500 करोड़ रुपए का दावा शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है, कंपनी ने तैयार की ऑडिट रिपोर्ट, इस सप्ताह सरकार को सौंपेंगे ब्यौरा। मौसम से जुड़ी खबर को दिव्य हिमाचल ने शीर्षक दिया है, हिमाचल में 2 दिन रेड अलर्ट, पठानकोट भरमौर राजमार्ग बंद। जबकि पंजाब केसरी की सुर्खी है, किन्नौर में फ्लैश फ्लड, चंबा में परियोजना की निर्माण सामग्री बही, 18 HAS अफसर बदले, 3 के आदेश रद्द, अमर उजाला की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निवेशकों से प्रदेश में निवेश करने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज, विधानसभा के मॉनसून सत्र पर मोहर लगने की संभावना। संसद का मॉनसून सत्र आज से होगा शुरू, सरकार ने विपक्ष से सहयोग का किया आग्रह। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, सहयोग के बावजूद केंद्र को कोसने में मुख्यमंत्री व्यस्त। और प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय, अधिकांश जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट, 4 जिलों में आज सभी शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

स्वागत है कार्यक्रम में 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया और इस वक्त हम लाइव हैं अपने फेसबुक पेज रेडियो गुंजन से। कार्यक्रम की शुरुआत में ही मतलब अभी ही बता देती हूँ आपको कि हमारा 7-0-1-8-1-1 क्षमा कीजिए थोड़ी देर में बताती हूँ। तो जो भी हमारा लाइव नंबर है वो आपको पता ही है, उस पर आप कॉल करके हमसे ज़रूर बतियाइएगा। 7-0-1-8-1-1-7-0-9-1 कभी कभी ना स्लिप ऑफ टांग हो जाता है। और अगर बात नहीं करना चाहते हैं तो मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, क्या है आपके मन में, थोड़ा सा प्रोग्राम सुन लीजिए और उसके बाद आप मैसेज कीजिएगा या फिर हमें कॉल कीजिएगा डायरेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि चांद का क्या राज है भाई आज के दिन, और इसी पर हम लेकर आए हैं आज का विचार भी। रातों को रोशनी देने वाले उस खूबसूरत चांद को सलाम, कितनी सदियों से इंसानी सपनों को दी है उड़ान। तो चांद की चमक सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं बल्कि अंधेरे को हराने की उसकी जिद भी है। आपको बता दूं कि आज शतरंज दिवस भी है। तो एक विचार में हम एक और विचार ऐड कर लेते हैं। जिंदगी खेल शतरंज का है, यहां हर शख्स मोहरा है, जीतता वही है साहब जिसका हौसला और सब्र गहरा है। तो श्रोताओं कार्यक्रम में होने वाली है चांद की बातें, साथ में शतरंज की खेल पर हम प्रकाश डालेंगे थोड़ा सा, और हो सकेगा तो जानकारियां भी दे देंगे आपको आसपास की। और साथ साथ में चांद के भरपूर गाने हमने आज कार्यक्रम में रखे हैं, और आप कहेंगे कि भैया अब दिन में चांद की बातें, यही तो रहस्य है, यही तो राज है। आपको पता है कि चांद कहीं नहीं गया, अभी भी यही है, बस हमें दिखता नहीं। और वो क्यों, वो कार्यक्रम में हम आपको आगे ज़रूर बताएंगे।

बताऊँ, बिल्कुल भी उसकी तारीफ तो की ही नहीं जा सकती है जिसने हम सब को बनाया है, क्योंकि वो तो लाजवाब है ना। कैनवे 2.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग।

आज कार्यक्रम में बातें होंगी शतरंज और चांद की। दोस्तों, आज कैलेंडर पर तारीख भले ही कोई भी हो, लेकिन आज हमारा आसमान मुस्कुरा रहा है क्योंकि हम मना रहे हैं इंटरनेशनल मून डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चांद दिवस। और वही चांद जो बचपन में हमारा चंदा मामा था, जवानी में आते आते वो महबूब का चेहरा बन गया। और कभी ईद का दीदार तो कभी करवा चौथ का इंतजार बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस चांद को देख करके हम हजारों साल से कविताएं और गाने लिख रहे हैं, उसका असली वैज्ञानिक सच क्या है? तो क्या चांद वाकई में रात को उगता है और सुबह कहीं डूब जाता है? क्या सूरज सच में पूर्व से निकल करके पश्चिम में सो जाता है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आज के इस स्पेशल शो में हम और आप मिल करके चलेंगे चांद की एक अनोखी जादुई और वैज्ञानिक सैर पर, यानी दुनिया में, और खोलेंगे ब्रह्मांड के वो राज जो शायद आपने स्कूल की किताबों में भी नहीं पढ़े होंगे। नहीं, पढ़े तो होंगे पर आपको याद नहीं होंगे। हम खोलेंगे ब्रह्मांड के वो सारे राज, हम सुनेंगे चांद पर कदम रखने की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी, जब अंतरिक्ष यात्रियों की धड़कनें रुक गई थी, और पर्दा उठाएंगे चांद से जुड़े कुछ ऐसे झूठ से, यानी भ्रम से, जिसे दुनिया सच मानती आई है। हाँ, सफर लंबा हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो समय उतना ही रहता है ना, 11 बजे तक का, तो रास्ते में बोरियत का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि मेरे तरकश यानी कि पिटारे में हैं चांद से जुड़े आपकी पसंद के वो सारे सदाबहार नगमे जो इस सफर को और भी हसीन बना देंगे। तो चलिए, बांध लीजिए अपनी सीट बेल्ट, थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि हम उड़ान भर रहे हैं सीधे बादलों के पार, चंदा मामा के घर।

जी चांद चुरा के लाया हूँ, क्या चांद को कोई चुरा सकता है। प्यारा सा गाना सुन रहे थे आप 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। देवता फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

जी श्रोताओं, तो किशोर दा और लता की आवाज़ में चांद चुराने की ये जिद दिल को छू गई है ना, आपके भी हमारे भी। लेकिन दोस्तों, चुराना तो दूर की बात, क्या चांद को कोई अपनी जगह से हिला भी सका है? तो चलिए आज मून डे पर जानते हैं इसका पहला वैज्ञानिक सच। अक्सर हम गानों में गाते हैं कि चांद छुप गया है या सूरज डूब गया है, पर सच तो ये है कि ब्रह्मांड में सूरज अपनी जगह पर स्थिर है। हमारी पृथ्वी एक लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वो दिन, वहाँ पर दिन होता है, और जो पीछे चला जाता है वहाँ पर होती है रात। यानी कि न कुछ उगता है और न डूबता, बस हमारी धरती गोल गोल घूम रही है और हम भी घूम रहे हैं इसके साथ साथ, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और यही नियम चांद पर भी लागू होता है। खैर, नींद का भी चांद से बड़ा पुराना नाता है।

0: लाखों में एक फिल्म का ये गीत था जो आपने सुना।
1: जागे सारी रहना
0: किशोर कुमार की आवाज में। 91.2 FM रेडियो वन जन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

कभी जब रात को नींद ना आए तो चंदा को देखना कितना सुकून देता है ना। वैसे चांद सिर्फ प्रेमियों का नहीं, हमारे बचपन का वो सबसे प्यारा चंदा मामा भी है, जिसे मम्मी हमें दूध के पूए पका करके खिलाती थी। लेकिन आज मून डे पर मैं आपको बता दूं कि आपके सगे मामा से ज़्यादा प्यार शायद चंदा मामा ही करते हैं, क्योंकि हर रात बिना थके लोरी सुनाने आ जाते हैं।

तो चलिए बचपन की गलियों में वापस चलते हैं इन दो बैक टू बैक गानों के साथ। जी हाँ बिल्कुल, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा और उस गीत के बारे में बाद में बताऊंगी।

वचन फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में अभी आपने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और चंदा मामा की बातें हो रही हैं आज कार्यक्रम में। कैसा लग रहा है आप लोगों को कि दिन में ही चांद की बातें हो रही हैं? थोड़ा सा तथ्य तो हमने आपको बता ही दिया है।

सब बच्चों को चंदा मामा से प्यारा ही लगता है अपना रियल मामा। वैसे चंदा को मामा क्यों कहते हैं पता है आपको? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं ना, लेडीज होती हैं, उन्होंने चांद को भी अपना भाई बनाया होता है। प्यारा सा तथ्य है ना, ये हमारी जीवन से जुड़ा हुआ कि बचपन में ही बच्चों को बता दिया जाता है कि ये चंदा मामा है। तो उनसे फिर पूछा जाता है चांद कहाँ है, तो वो ऊपर की तरफ देख करके इशारा करते हैं कि वहां है। बचपन की यादें तो हो गई ताजा, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे गीत हैं हमारे पास जो कि आपको बचपन में लेके चले जाएंगे। और जब हम बचपन में जिद करते थे कि ये जो ऊपर चांद चमक रहा है, या हमें तो नहीं पता होता था चांद है, हमें बताया जाता था कि चंदा मामा है, तो हमें उसे लेने की, उसे पकड़ने की जिद हो जाती थी कई बार, कई बच्चे करते थे। और इसी जिद में कई बार वो उठा पटक भी कर लेते थे, खुद को हर्ट भी करते थे, तो फिर क्या किया जाता था, समझाया जाता था उन्हें कि चंदा मामा तो बहुत दूर रहते हैं भैया, वो नहीं आ सकते, उन्हें पकड़ा नहीं जा सकता। तो एक थाल में पानी भर करके रखा जाता था और फिर उस थाल में चंद्रमा की परछाई देख करके बच्चे खुश हो जाते थे और उसे पकड़ने की कोशिश करते थे पानी में। जैसे ही हाथ डुबोते थे तो चांद कभी इधर हिलता था और कभी उधर हिलता था, यानी कि उसकी परछाई पानी के साथ साथ में डोलती रहती थी। और वो देख करके बच्चे और भी खुश होते थे, क्योंकि वो बार बार हाथ मारते थे, तो जब उधर वो चांद चला जाता तो वो उधर हाथ मारते, तो इस तरह से उनके लिए खेल भी हो जाता था और चांद हमारे पास आ गया है इसकी खुशी भी हो जाती थी। चलिए फिर बचपन का एक और गीत सुन लेते हैं।

वचन फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आपने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बचपन की यादें हो रही है ना धीरे धीरे ताजा, लेकिन जब बड़े होकर के हम आसमान को देखते हैं तो एक और सवाल मन में आता है कि ये चांद कभी घटता और बढ़ता क्यों है, और ये तारे दिन में कहाँ चले जाते हैं। तो विज्ञान तो कहता है कि चांद का आकार कभी नहीं बदलता, वो हमेशा गोल फुटबॉल जैसा ही रहता है। आप कहेंगे कि नहीं भाई, 16 कलाओं वाला चांद होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, हमें तो रोज़ ऐसा ही नज़र आता है। तो पृथ्वी का चक्कर लगाते समय उस पर सूरज की रोशनी जितनी पड़ती है ना, उतना ही हिस्सा हमें चांद का दिखाई देता है, जिसे कि हम चांद की कलाएं कहते हैं। तारों की बात करें तो तारे भी दिन में कहीं नहीं जाते हैं, सूरज की तेज़ रोशनी की वजह से दिन में छिप जाते हैं। और जब चांद थोड़ा छुपता है तो लगता है कि सारे तारे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं।

आगे कौन कौन से तारे थे जो चंदा को ढूंढने निकल पड़े, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, हेमलता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी इस गीत में। फिल्म का नाम जीने की राह। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज हम आपको चांद की सैर पर लेकर चले हैं। ढूंढने चल पड़े हैं चंदा को। तो दोस्तों, आज मून डे तो है, लेकिन चलिए आपको समय के पहिए को थोड़ा पीछे लिए चलते हैं और आपको भी लिए चलते हैं पीछे। एक साल था

एक साल था हमारा 1969, तारीख थी 20 जुलाई। पूरी दुनिया की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थी। अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद की सतह के बिल्कुल करीब था। कमांडर नील आर्मस्ट्रांग और उसके साथ ही बज एल्ड्रिन चांद पर उतरने ही वाले थे कि अचानक चांद की सतह से सिर्फ कुछ 100 फीट ऊपर उनके लूनर मॉड्यूल का कंप्यूटर अचानक 1202 अलार्म देने लग पड़ा। कंप्यूटर ओवरलोड हो चुका था। नासा के वैज्ञानिकों के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स बाकी थे। अगर मिशन रद्द नहीं किया गया तो यान क्रैश भी हो सकता है।

हौसला देखिए, उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। तो दोस्तों, खतरा यही खत्म नहीं हुआ। जब नील आर्मस्ट्रांग ने नीचे देखा तो जिस जगह पर कंप्यूटर यान को लैंड करा रहे थे वहां पर बड़े बड़े पत्थर और एक बड़ा गड्ढा था, यानी क्रेटर था। वहां उतरने का मतलब था मौत। आर्मस्ट्रांग ने तुरंत कंप्यूटर को हटा करके यान का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, यानी कि मैनुअल कंट्रोल, और वो सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए यान को आगे उड़ाने लगा। धरती पर कंट्रोल रूम में बैठे वैज्ञानिकों की सांसें थम गईं, क्योंकि यान का फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था। तो अलार्म बज उठा कि सिर्फ 60 सेकंड का ईंधन बाकी है। फिर खबर आई कि सिर्फ 30 सेकंड, और अगर 30 सेकंड में यान नहीं उतरा तो वो चांद पर गिर करके तबाह हो जाता। और फिर ठीक 20 सेकंड का ईंधन रहते हुए नील आर्मस्ट्रांग ने यान को सुरक्षित चांद की रेतीली जमीन पर उतार दिया। और नील आर्मस्ट्रांग ने रेडियो पर नासा को संदेश भेजा, ह्यूस्टन ट्रैंक्विलिटी बेस हियर, द ईगल इज लैंडेड। और धरती पर बैठे वैज्ञानिकों की जान में जान आई, कई लोग खुशी से रो पड़े।

और यान उतरने के कुछ घंटों बाद नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद की सतह पर अपना बायां पैर रखा तो उन्होंने वो अमर वाक्य कहा, ये इंसान का एक छोटा सा कदम है लेकिन पूरी मानव जाति के लिए बहुत बड़ी छलांग। और उन्हीं का ये कदम था जिसकी वजह से हम आज आपसे ये बात कर पा रहे हैं, आपको चांद के बारे में बता पा रहे हैं और ये दिवस मना पा रहे हैं।

तो भाई ले गए ना हम आपको चांद पर जख्मी। फिल्म का ये गीत था लता मंगेशकर की आवाज में। वैसे छोटे छोटे बच्चों के संदर्भ में ही ये वाला भी गीत था, इसको आपने सुना है 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला।

और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जी हाँ, चांद के और पहलुओं पर भी नजर डालते हैं। तो देखो, अक्सर हम किसी की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा चांद जैसा है। जैसे हमारे अगले गाने के भी बोल कुछ ऐसे ही हैं, वैसे ऐसे तो नहीं है लेकिन मिलते जुलते हैं, लेकिन तारीफों से अलग। क्या आप जानते हैं कि चांद से जुड़े कुछ ऐसे झूठ हैं जिन्हें हम सच मानते आए हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि चीन की दीवार चांद से दिखती है, जबकि अंतरिक्ष यात्रियों ने ये कहा कि वहाँ से धरती की कोई इंसानी चीज़ नहीं दिखती। लोग कहते हैं पूर्णिमा को लोगों का जो दिमाग है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, यानी कि वो हाई लेवल पे चले जाते हैं, पर इसका कोई डॉक्टरी सबूत नहीं है। और चांद का कोई डार्क साइड नहीं है, वहाँ पर भी धूप पड़ती है। तो चंद्रमा पूरा का पूरा चमचमाता है। चलिए फिर इस खूबसूरत से गीत को सुन लेते हैं।

जी हाँ, देखा फिर सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। रहता है आपके सामने खिड़की में या आपके घर में ही रहता है? तो भाई, चांद तो जहाँ पर भी आप सोचें आपको मिल सकता है। क्यों? इक्यानवे दशमलव 2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से हम बोल रहे हैं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

तो खिड़की वाले चांद की बात तो हो गई दोस्तों, लेकिन चांद सिर्फ पड़ोस का रोमांस नहीं है, ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते का भी प्यारा गवाह है, जहां बहनें चंदा भैया से अपने भाई की सलामती का पैगाम भेजती हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में कश्मीर रक्षाबंधन फिल्म का ये गीत आपने सुना। और दोस्तों की बात है कि इस गीत ने हमें कर दिया है भावुक। पर दोस्तों बचपन में एक सवाल सबको सताता था कि ये चांद कभी घटता बढ़ता क्यों है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया कि विज्ञान कहता है कि चांद का आकार कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक परफेक्ट गोल फुटबॉल की तरह ही रहता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय जिसमें उसे 27.3 दिन लगते हैं, उस पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी का जितना हिस्सा हमें दिखता है, हमें लगता है कि उसका आकार बदल रहा है। वैसे हिंदी साहित्य में च अक्षर और चांद का बड़ा गहरा नाता है। जैसे कवि कहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चलिए च अक्षर के इस मजेदार ट्विस्टर और चुलबुले अंदाज के साथ सुनते हैं ये गीत। लाजवाब गीत है ये।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा

थोड़ी चीनी खो। तो भाई ये च अक्षर और बहुत सारे अक्षर यानी टंग ट्विस्टर वाला गाना है जो कि चंदा से स्टार्ट होता है।

और फना फिल्म का ये गीत है जिसे आपने सुना 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

तो गली में चांद निकलने की खुशी कुछ और ही होती है। वैसे चांद की तारीफ में जब शम्मी कपूर साहब गीत गाते हैं, मतलब दिखाया जाता है कि वो गा रहे हैं, तो पूरा बदन थिरक उठता है। लेकिन चांद सिर्फ रोमांस नहीं, भाई बहन के उस

कश्मीर की कली फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

आज आपने चांद के बारे में क्या क्या सुन लिया? भाई हमारे कवियों ने तो चांद को अपनी किताबों में, शायरी में कैद करके रख लिया है। कितना कुछ नहीं कहते हैं वो चांद के बारे में, और क्या क्या रूपक दे देते हैं किसी को चांद के साथ कंपेयर करते हैं।

तो अब आपको समझ में आ गया है ना कि अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक जो चांद के बदलते रूप हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं। फिर से बता देते हैं आपको कि तारे तो 24 घंटे अंतरिक्ष में यानी अपनी जगह पर चमकते रहते हैं, दिन में कहीं नहीं जाते। और जिन्होंने नहीं सुना है श्रोताओं ने, उनके लिए बता देते हैं कि सुबह सूरज का प्रकाश इतना तेज और शक्तिशाली होता है कि उसकी चकाचौंध में दूर टिमटिमाते तारों की धीमी रोशनी छिप जाती है। जैसे ही रात को सूरज की रोशनी गायब होती है तो वो फिर से हमें दिखाई देने लग जाते हैं। सेम चांद के साथ भी है। कभी आपने देखा होगा कि दिन में भी हमें कभी कभी चांद बहुत देर तक नजर आता है, यानी एक तरफ सूरज निकला होता है और एक तरफ चांद होता है।

तो दोस्तों, इंसानों ने तो चांद पर कदम रख दिया, लेकिन हमारे कवियों और शायरों के लिए चांद हमेशा दूर का और बड़ा ही खूबसूरत सा अफसाना रहा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चांद के कुछ झूठ यानी कि भ्रम भी हैं, और उनका वैज्ञानिक सच क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अक्सर फिल्मों और कहानियों में हम सुनते हैं कि डार्क साइड ऑफ द मून, तो लोग सोचते हैं कि चांद का जो पिछला हिस्सा है हमेशा अंधेरे में डूबा रहता होगा। तो चांद के हर हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ये सच है कि चांद का एक हिस्सा फॉर साइड है जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखाई देता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जितने समय में चांद अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमता है, उतने ही समय में वो पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाता है। इसीलिए हमें हमेशा उसका एक ही चेहरा दिखाई देता है, और पर वहाँ पर अंधेरा नहीं, हमेशा नहीं होता। शायद कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जब पूरा चांद निकलता है तो, ये तो हमने आपको वैसे बता ही दिया था कि इंसानों का दिमाग अजीब सा बर्ताव करने लग जाता है, लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं या क्रेज़ी हो जाते हैं, और हॉलीवुड फिल्मों में तो भेड़िया यानी कि वेवुल्फ ही बन जाते हैं। लेकिन ये भी पूरी तरह से अंधविश्वास है। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने दुनिया भर के अस्पतालों और पुलिस थानों के रिकॉर्ड की जांच की है। पूर्णिमा का दिन के दिन अपराध या मानसिक बीमारियों के बढ़ने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है। और पूरे कार्यक्रम में हम आपको ये बताते ही रहे कि चांद गोल ही होता है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। तो बचपन में जब हमने ये बात सुनी कि चांद कभी चपाती जैसा गोल है, कभी कटोरी जैसा आधा, तो कभी हवा में उड़ती हुई हुक जैसा छोटा, तो ये मिथ भी आज आपका ख़त्म हो गया होगा। क्योंकि बच्चों को बहलाने के लिए ना बहुत कुछ बोला जाता है, बच्चे तो बच्चे हैं, और बड़े होते होते तक जब हम सिलेबस बुक्स में भी पढ़ते हैं चीज़ें सच्चाइयाँ, लेकिन उसके बाद फिर जब हमारे बच्चे होते हैं, परिवार बढ़ता है, तो हम भी अपने बच्चों को उसी तरह की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते हैं चांद से संबंधित, तो फिर समय के साथ साथ हम भी भूल जाते हैं कि चांद वास्तव में कैसा है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। वो सबूत देते हैं कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने वहाँ अमेरिकी झंडा लगाया था तो वो तो हवा में लहरा रहा था, जबकि चांद पर तो हवा होती ही नहीं। तो चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए वहाँ हवा का नामो निशान नहीं है। तो झंडा लहरा नहीं रहा था, बल्कि नासा ने झंडे के ऊपर एक सीधी रॉड लगाई थी, डंडा लगाया था ताकि झंडा सीधा रहे। और जब अंतरिक्ष यात्री उसे ज़मीन में गाड़ रहे थे चांद की सतह पर, तो वो कपड़े में सिकुड़न यानी रिंकल्स आ गए थे, और वो हवा के बिना वैसे ही सिकुड़न जो थी, रिंकल्स जो थे, वो वैसे ही जम गए, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वो झंडा लहरा रहा है।

और वो जो चीन की दीवार दिखती है चांद से, उसके बारे में भी हमने कार्यक्रम में आपको बता दिया है पहले ही कि चांद से पृथ्वी की कोई भी इंसानी चीज़ नहीं दिखाई देती। वहाँ से चीन की दीवार देखना तो दूर की बात है, पूरे के पूरे शहर भी नज़र नहीं आते हैं। वहाँ से सिर्फ हमारी नीली सफ़ेद खूबसूरत पृथ्वी ही दिखाई देती है। स्कूल की किताबों से लेकर के सोशल मीडिया तक जो फैला हुआ झूठ था ना, उस पर हमने थोड़ा सा प्रकाश आज अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से तो डाला है।

खूबसूरत सा गीत सुना आपने 91.2 एफएम रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और ये भी शुरू होता है चारों चंद्र की चंचल चितवन से। श्रोताओं, चांद की बातें बहुत हो गई और अब हम बात करेंगे शतरंज दिवस के बारे में। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की 1924 में हुई स्थापना की याद दिलाता है। और ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि शतरंज की उत्पत्ति प्राचीन में भारत से के खेल चतुरंग से ही हुई थी, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ये जो चेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो याद रखिएगा कि इसकी शुरुआत भारत से ही हुई। शतरंज दुनिया के सबसे पुराने और लोकप्रिय रणनीतिक खेलों में से एक है। छठी शताब्दी में गुप्त काल में भारत में इसे चतुरंग के नाम से खेला जाता था। समय के साथ ये खेल अरब और फारस से होता हुआ शतरंज के रूप में यूरोप और पूरी दुनिया में फैल गया। 1924 में पेरिस की फील्ड की स्थापना हुई और 66 से यूनेस्को के प्रस्ताव पर 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाने लगा।

हाँ, मैं बात करूंगी शतरंज के खिलाड़ी फिल्म की, जो कि सत्यजीत रे ने बनाई थी। केवल मनोरंजन के लिए बनी नहीं बनी थी ये फिल्म, ये उस समय की मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी पर आधारित एक गहरा ऐतिहासिक और सामाजिक राजनीतिक कटाक्ष था। फिल्म ये दिखाती थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जनरल आर्ट्रम चालाकी से अवध पर कब्जा कर लेते हैं, और यहाँ शतरंज का एक खेल एक प्रतीक यानी मेटाफर के रूप में है। एक तरफ अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी असल में जिंदगी के राजनीतिक बिसात पर चालें चल रही थी, और वहीं अवध के नवाब रईस बंद कमरों में लकड़ी के मोहरों की शतरंज में डूबे हुए थे। और ये जो फिल्म थी, ये शासकों की इसी आत्ममुग्धता और लापरवाही को उजागर कर रही थी। और ऐसी ही एक फिल्म है वजीर, जिसमें कि अमिताभ बच्चन ने अभिनय किया है। इसी फिल्म का आखिरी गीत हम कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं। और ये वजीर फिल्म में भी जो कहानी है वो पूरी शतरंज के आसपास ही दिखाई गई है।

तो श्रोताओं, आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं। और अगर आया हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा। और कार्यक्रम में अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे फिर किसी और दिन इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

नमस्कार दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जाएगा ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुड़बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गेन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं ऑर्गन इंडिया की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में, जो कि अंग दान देह दान के लिए समर्पित है और इसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जीवन एक अनमोल उपहार है। अनमोल मतलब इसका हम मूल नहीं लगा सकते। आप अन्न दान कर सकते हो, आप धन दान कर सकते हो, लेकिन जो अंग दान है वो इतना महान है कि आप सीधा सीधा किसी की जिंदगी बचा रहे हो और उस जिंदगी को बचने के बाद वो इंसान क्या कुछ कर सकता है अपनी लाइफ में। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये अंगदान जो है वो सबसे बड़ा दान कहलाता है। इसी सीरीज में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक किडनी डोनर हैं। इन्होंने 1993 में अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट कर दी थी। ये इंदौर के रहने वाले हैं, तो चलिए आज इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1993 में जब इतने कम अंग प्रत्यारोपण हमारे देश में हो रहे थे और अंग दान जैसी चीज तो बहुत बड़ी थी, मतलब नामो निशान नहीं था इसका, तो उस समय पर भी इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अपने भाई की जान बचाई, तो अब जाके ये कैसा फील करते हैं, सब चीजें जानेंगे हम। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। विवेक जी, जैसा कि मैंने श्रोताओं को अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने अपने भाई को किडनी डोनेट कर दी थी, तो थोड़ा सा आप इस बैकग्राउंड के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि आप क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, एंड फिर आप ये बताइए हमारे श्रोताओं को कि आपके जो भाई थे जिन्हें आपने किडनी डोनेट करी और जिनको किडनी की जरूरत थी, वो उनकी प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई सब और किडनी ट्रांसप्लांट तक कैसे बात पहुंच गई।
3: एक्चुअली मैं अभी रायपुर में रहता हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और यहाँ पे एक कंपनी में एज ए कंसल्टेंट सर्विस कर रहा हूँ। जब मैंने किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत, मेरे ब्रदर को कुछ तबियत खराब थी और उसके बाद उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ जिसके कारण उनकी किडनी फेल हो गई और डॉक्टर्स ने बोला कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। उस समय हम लोग छत्तीसगढ़ में ही रहते थे, राजनांदगांव में रहते थे और यहाँ आसपास पूरे सेंट्रल इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट किडनी से रिलेटेड किसी भी इलाज किडनी से
2: सुविधा उपलब्ध नहीं थी उस टाइम पर।
3: हाँ, डायलिसिस वगैरह कोई भी चीजें उस समय उपलब्ध नहीं थी सेंट्रल इंडिया में, सिर्फ तुलसीराम हॉस्पिटल इंदौर में ही ये सुविधा उपलब्ध थी और मेरे फादर डेप्टी कलेक्टर थे उस समय, एमपी छत्तीसगढ़ एक ही था, तो मेरे पिताजी ने अपना ट्रांसफर मेडिकल ग्राउंड पे इंदौर करवाया और इंदौर में फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। मेरे ब्रदर का दो बारी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, एक बारी मेरे जी
2: मतलब आपने जिस समय किडनी दी थी वो सेकंड ट्रांसप्लांट था उनका।
3: जी, उस समय उनका सेकंड ट्रांसप्लांट था जो कि 93 में हुआ था, उससे पहले 89 में फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ था।
2: ओके, चार साल पहले करीब एक और ट्रांसप्लांट होता, तब किसने किडनी डोनेट करी थी अपनी?
3: तब मेरे फादर ने किडनी डोनेट करी थी।
2: ओके, ठीक है
3: जी।
2: तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमने अपने पहले के शोज में भी बताया है कि जो इंडिया में जो कानून है वो 1994 में पहली बार आया था इस किडनी ट्रांसप्लांट को या अंग प्रत्यारोपण को लेकर जो कानून बनाया गया था, जिसमें ब्रेन डेथ के बारे में भी बताया गया था, वो 1994 में आया था। मतलब उससे पहले कोई कानून ही नहीं था हमारे देश में ट्रांसप्लांट की सर्जरीज को और अंगदान की सुविधा को लेकर। तो सर, आप ये बताइए कि उस टाइम पर जब इतना अवेयरनेस ही नहीं थी, आज के जमाने में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है पहले के कंपैरिजन में, बट उस टाइम पे तो इन चीजों का नामो निशान भी नहीं था, कानून ही नहीं था, तो उस टाइम पर चीजें कैसी थी, मतलब कैसे आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, फादर के टाइम पे तो बहुत ही पुराना है, बट आप अपने टाइम की चीजें बताएं कि उस टाइम पर क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको। मतलब मैं अपनी समझ के अकॉर्डिंग तो ये कह सकता हूँ कि ज्यादा समस्या नहीं होंगी क्योंकि कानून ही एग्जिस्ट नहीं करता था, तो कोई गाइडलाइंस ही नहीं थी।
3: गाइडलाइंस की बात डॉक्टर साहब नहीं है, गाइडलाइंस भी नहीं थी, और दूसरी बात ये थी कि उस समय जो हमको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए ब्लड अरेंज करना रहता था उसके लिए भी हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। डॉक्टर बोलते थे कि 5 यूनिट 6 यूनिट आपको एडवांस में ब्लड अरेंज करवा के रखना पड़ेगा, तो उसके लिए ही हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था।
2: बिल्कुल समझ सकता हूँ, उस टाइम पर कोई सोशल मीडिया नहीं था, आज के जमाने में सारे आई बैंक वेबसाइट से कनेक्टेड है, उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं था,
3: तो उस समय हम लोग इस चीजों को काफी मुश्किलों से इन सब चीजों को काफी एक एक बंदे को हम लोग को मतलब इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड डोनेशन के लिए उनको लाना पड़ता था, ब्लड डोनेशन का भी उस समय उतना अवेयरनेस नहीं था।
2: बिल्कुल बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। तो तिवारी जी आप ये भी बताइए हमारे श्रोताओं को, जैसे फर्स्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर आपके भाई की एज कितनी थी?
3: फर्स्ट ट्रांसप्लांट मेरे ब्रदर का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 1964, फर्स्ट ट्रांसप्लांट 1988 में हुआ था, तो उस समय उनकी एज 24 ईयर्स की थी।
2: सो मतलब फर्स्ट ट्रांसप्लांट के टाइम पर 24 एंड सेकंड ट्रांसप्लांट के टाइम पर 28 ईयर्स की एज थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो उस टाइम पर जब पहला ट्रांसप्लांट तो हो चुका था ऑब्वियसली, आप लोग एक समस्या से उबर चुके थे, लेकिन जब डॉक्टर्स ने बताया कि दूसरा ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा और ये ऑर्गन रिजेक्ट हो गया है या इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, तो तब आपके फैमिली का रिएक्शन क्या था? बिकॉज एक समस्या से जैसे तैसे उभरे थे एंड देन दूसरी बार सेम समस्या आके खड़ी हो गई थी दरवाजे पर।
3: अच्छा, दूसरी बार जब समस्या आई डॉक्टर साहब, तो सबसे बड़ा शॉक हम लोगों के लिए क्या था कि फादर 92 में रिटायर हो चुके थे और 93 में सेकंड ट्रांसप्लांट मतलब 93 में भैया का किडनी फेल हुआ, तो फर्स्ट ट्रांसप्लांट का तो रिएम्बर्समेंट हुआ गवर्नमेंट से हो गया था। अच्छा, और ट्रांसप्लांट के समय जो रिएम्बर्समेंट की बात थी, उस समय जो हॉस्पिटल से रिकॉग्नाइज थे एमपी गवर्नमेंट के लिए, वो उन लोगों ने जसलोक हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल बॉम्बे को किया था
2: जी।
3: इंदौर का जो चोईतराम हॉस्पिटल था उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था रिएम्बर्समेंट के लिए। तो मेरे पिताजी ने काफी लेटर वगैरह लिखकर विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठा था कि क्यों ना चोईतराम हॉस्पिटल में ही जब ये सब चीजें अवेलेबल है, और तो फिर मतलब बॉम्बे जाना और बॉम्बे का खर्चा प्लस ट्रांसप्लांट का खर्चा, ये दोनों डबल डबल खर्चों की बात एक पेशेंट को फेस करना, पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को फेस करना, ये बहुत बड़ा एक आर्थिक
2: संकट था।
3: हाँ, बहुत बड़ा एक आर्थिक संकट था। सेकंड ट्रांसप्लांट के समय तो मतलब ऐसा हो गया था कि फादर जॉब में थे नहीं, फादर रिटायर हो चुके थे और हम लोग जस्ट जॉब में आ ही थे, प्राइवेट जॉब में आए थे जहाँ पर ऐसी कोई उसकी व्यवस्था थी नहीं रिएम्बर्समेंट की, फिर भी हम लोगों ने कैसे भी करके उसको मैनेज किया और ट्रांसप्लांट करवाया।
2: उस जमाने में करीब कितना खर्चा आया था आपको ट्रांसप्लांट का? दोनों मैं दोनों के बारे में जानना चाहूंगा, 88 वाले ट्रांसप्लांट और 93 वाले, दोनों ट्रांसप्लांट के।
3: 88 का जो ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें तकरीबन 1 लाख के लगभग खर्चा आया था, और जो 93 में ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें तकरीबन 1.5 लाख के लगभग खर्चा आया था।
2: देखिए 1.5 लाख और 1 लाख उस जमाने में कितनी ट्रांसप्लांट का खर्चा आया था, और आज यही सेम सर्जरी का खर्चा लगभग 7 से 8 लाख हो गया है।
3: जी
2: समय
3: जबकि उस समय किडनी दोनों ही हमारे घर की थी, उस समय किडनी की खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा होती थी।
2: तो आपने किडनी खरीद फरोख्त के बारे में बात करी, तो उस जमाने में तो कोई कानून भी नहीं था, तो ये कोई क्राइम की कैटेगरी में भी नहीं आता था, तो उस टाइम पर
3: कानून भी नहीं था।
2: उस टाइम पर फिर आपने कैसे ये डिसाइड किया कि हम इस ऑप्शन के लिए ना जाके और ये ऑप्शन ट्राई करेंगे कि घर में से ही किसी को देंगे, क्योंकि लोगों को हमेशा डर रहता है। तो जी
3: उस ऑप्शन के बारे में हम लोगों ने इसलिए ज्यादा सोचा नहीं, खरीद फरोख के बारे में इसलिए नहीं सोचा क्योंकि उसमें जो सक्सेस वाली बात थी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो सक्सेस वाली बात थी, उसमें डॉक्टरों का कहना था कि अगर रिलेटिव अगर डोनेट करता है तो उसमें सक्सेस रेट ज्यादा है उस समय के डाटा के हिसाब से, और अगर किसी डोनर से आप लेते हो तो सक्सेस रेट कम रहता है। तो डॉक्टरों का सजेशन नहीं रहता था कि अगर रिलेटिव की किडनी मिल जाए तो दैट विल बी गुड मैच।
2: ठीक है,
3: इस कारण हम लोगों ने खरीद मतलब किडनी खरीदने की कभी कोशिश नहीं करी, जबकि उस समय चेन्नई वगैरह में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जिसमें डोनर की लिस्ट रहती थी, ग्रुप वाइज ब्लड ग्रुप वाइज डोनर की लिस्ट रहती थी। आप उनसे कांटेक्ट करिए, उनसे बात करिए, इवन उनका रेट भी फिक्स रहता था, आप उनको पैसे दीजिए, आप और किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, इस तरह की व्यवस्था उस समय रहती थी। कोई दूसरा और कानून उस समय जैसा कि आपने बताया एग्जिस्ट ही नहीं करता था।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल विवेक जी, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस अंतराल के बाद आकर अपनी चर्चा को हम जारी रखेंगे।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
4: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आंखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आंखों से वो दुनिया को देख सकता है, हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुँचाएँ, सब इस बात को जाने कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले बात कर रहे थे इंदौर के रहने वाले जो कि आजकल रायपुर में रह रहे हैं विवेक तिवारी जी से। इन्होंने 1993 में अपने भाई को एक किडनी डोनेट करके उनकी जान बचाई थी और ये उनके भाई का सेकेंड ट्रांसप्लांट था। विवेक जी, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले कानून के ऊपर और ये किडनी की खरीद फरोख्त के ऊपर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1994 में हमारे देश में कानून आया था और उस कानून में सबसे पहली बात यही कही गई थी कि किडनी बेचना और खरीदना अब दोनों ही कानूनन जुर्म है और ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए और नहीं करने देगी सरकार। तो आपके केस में तो आपने बता दिया कि उस टाइम पर कोई कानून नहीं था तो सब कुछ खुलेआम ये सब चीजें होती थी। तो ये बताइए कि कई बार होता है कि जैसे आपने बताया कि डॉक्टर ने बताया था कि सबसे अच्छा मैच फैमिली में से अगर कोई डोनेट कर दे तो उनका ही होता है, अदरवाइज बाहर से जो किडनी लेंगे आप उसके रिजेक्शन ज्यादा होते हैं, उसकी सक्सेस रेट नहीं होती। लेकिन जो आपका फर्स्ट ट्रांसप्लांट हुआ वो 4 साल में फेल हो गया, तो ये बात तो आपके सामने मतलब गलत हो गई होगी कि सक्सेस रेट इसमें भी नहीं था क्योंकि फैमिली के ऑर्गन मिला था तब भी सक्सेस इतना नहीं हो पाया। इन द सेकेंड टाइम में जब फैमिली के ही देने की बात करी तब तो आप ये ऑप्शन इजीली कंसीडर कर सकते थे ये आर्ग्यू करके। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत सारे डर भी रहते हैं अपनी चीज को लेके कि हमारी डोनेट करने के बाद खुद की लाइफ का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे। और उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कि एक किडनी पर हम आराम से निकाल सकते हैं अपनी पूरी लाइफ। तो इन सब चीजों को आपने कैसे मैनेज किया उस टाइम पर, आपने और आपकी फैमिली ने?
2: इसके बारे में मैंने अपने पिताजी से भी बात करी जो कि उस समय ऑलरेडी किडनी डोनेट कर चुके थे भैया को। उनसे बात करी कि आपको क्या हेल्थ इश्यूज आए तो मेरे पिताजी ने यही बोला कि मेरे को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आए। उन्होंने मेरे को कभी कोई फोर्स भी नहीं किया कि तुमको किडनी देना पड़ेगा, तुम्हारी विलिंगनेस है, अगर तुम देना चाहो तो ठीक है, नहीं देना चाहो तो कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। इस तरह की बात हुई पिताजी से और पिताजी ने ही मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज नहीं आता है किडनी डोनेशन के बाद में, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हो। और मैं उनको शिक्षा भी था, वो सब चीजें नॉर्मल जिंदगी ही जी रहे थे। और तो मेरे को मैं बोला कि अगर इस एज में पिताजी की एज उस समय करीब करीब 55-56 ईयर की थी जब उन्होंने किडनी डोनेट करी।
1: ओके। हम आपसे एक बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि आज के जमाने में इतनी जागरूकता होने के बाद भी, आप उस जमाने से तो बहुत ज्यादा जागरूकता बढ़ गई है, बट स्टिल आज भी ये लोग बिलीव करते हैं कि अगर हमने एक किडनी दे दी तो हमारा क्या होगा, हमें कोई हेल्थ इश्यू फेस करना पड़ सकता है। तो जब आपके सामने तो लाइव एग्जांपल था लेकिन आपके जरिए हम उन लोगों को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आपके सामने ऐसी सिचुएशन है तो आप जरूर इसे हाँ कहें और आप किसी की जान बचा सकते हैं अपने परिवार के सदस्य की। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे दूर के रिश्तेदार होते हैं और जो फैमिली वाले होते हैं वो भी हमें हमेशा नेगेटिव ही बताते हैं इन सब चीजों के बारे में, बट आपके केस में ऐसा नहीं था क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जांपल था, एक बार पापा ऑलरेडी डोनेट कर चुके थे और उन्होंने कभी कोई कुछ फेस नहीं किया। 1993 के बाद आपके भाई अब उनकी सिचुएशन कैसी है?
2: एक्चुअली 93 के बाद भैया का स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक चल रहा था और भैया यूनिवर्सिटी में उस समय तक वो अपनी हायर स्टडीज कर चुके थे। आफ्टर फर्स्ट ट्रांसप्लांट उन्होंने हायर स्टडीज कंप्यूटर में करी थी क्योंकि उस समय कंप्यूटर का सेक्टर बूम चल रहा था। तो फिर उन्होंने बाद में अपना स्किल बढ़ाया और कंप्यूटर्स में वो प्रोफेसर बन गए और यूनिवर्सिटी में काम करना चालू कर दिए थे। पहले रीडर के पोस्ट में उनका अपॉइंट हुआ था, फिर आज की डेट में वो प्रोफेसर है। और 93 से लेके 2006-07 तक उनका जो मैंने किडनी उनको दी थी वो वर्किंग रही और फिर उसके बाद वो किडनी फिर वापस फेल हो गई 2007 में। उसके बाद से भैया वापस डायलिसिस में है, आज की डेट में अभी भी अलाइव है और हालांकि बहुत ज्यादा वीक है, अभी चल फिर भी नहीं पाते थे अच्छे से, व्हील चेयर में ही कॉलेज भी जाते हैं और वापस उनका डायलिसिस आज की डेट में चालू है। हफ्ते में 3 दिन उनका डायलिसिस होता है तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज तो उनके पास अब जाके है। पिछले 3-4 साल से काफी ज्यादा हेल्थ इश्यूज वो फेस कर रहे हैं और हम लोग उनको पूरा सपोर्ट करते रहते हैं। मतलब सपोर्ट क्या करते रहते हैं, साथ में ही वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती है, सिस्टर काफी टेक केयर करती है उनसे इंदौर में, और जरूरत पड़ने पे मैं भी जाते रहता हूँ इंदौर। फ्रिक्वेंट विजिट मेरा इंदौर रहता है, रायपुर से इंदौर मेरा फ्रिक्वेंट विजिट करता है भैया के पास।
1: तो ये चार पांच साल से, मतलब तीन चार साल से ये इशू फेस हो रहा है, अदरवाइज 1993 के बाद 2020 तक बिल्कुल, 2019 तक बिल्कुल ठीक थे।
2: जी जी, मतलब डायलिसिस तो 2007-08 से चालू हो गया था उनका।
1: अच्छा।
2: वापस लेकिन उसके बाद भी वो खुद अपना, मतलब उनका खुद अपना विल पावर उनका इतना स्ट्रांग है कि वो खुद अपनी कार चला के डायलिसिस करवाने जाते थे, और डायलिसिस करवा के वापस अकेले ही अपना घर में आ जाते थे, तो उसमें खुद अपना सेल्फ मैनेज कर लेते थे। लेकिन अभी तीन चार साल से वो बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं, तो अभी उनको ड्राइवर ही लेके जाता है, और दूसरे कुछ हेल्थ सपोर्टर रखे हुए हैं हम लोग, अपॉइंट किए हुए हैं जो उनका टेक केयर करते रहते हैं, और हम लोग भी आते जाते, हम लोग भी उनकी टेक केयर पूरी तरह से करते रहते हैं।
1: अब कोई प्लान है उनके किडनी ट्रांसप्लांट का, अपने डॉक्टर से बात करी?
2: नहीं सर, अब क्या है कि उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, तो डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट का हम लोगों ने उतना थिंक ओवर भी नहीं किया, क्योंकि उन लोग काफी वीक हो चुके हैं, तो ऐसा था ट्रांसप्लांट की कभी बात।
1: आपकी, अगर आपकी बात करें तो आप इतने साल हो गए किडनी डोनेट के हुए, कभी आपको इस वजह से कोई इश्यू फेस करना पड़ा हो, या अब आपकी हेल्थ के बारे में अगर बात करें तो किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं?
2: मैं अभी मैं एक नॉर्मल लाइफ ही जी रहा हूँ, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की हेल्थ इश्यूज मेरे साथ में किडनी को लेकर नहीं है। हाँ, एज के साथ में जो हेल्थ इश्यूज रहती है, बीपी है, बॉर्डर लाइन पे शुगर भी है, जिसका कि इलाज मैं करवा रहा हूँ, उसके मेडिसिन लेते रहता हूँ, और दूसरे कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है मेरे को। इवन मैं एक हैप्पी फैमिली में रह रहा हूँ, मेरे मैरिज 19

0: डेट में हुई है मेरी मैरिज।
1: मैरिज की बात करें तो एक और बात बताइए सर हमारे श्रोताओं को कि किडनी ट्रांसप्लांट किडनी डोनेशन की वजह से कभी मैरिज में कभी कोई समस्या आई जब शादी हो रही हो फिक्स हो रही हो, आपने ऑब्वियसली बताया होगा अपने पार्टनर को होने वाले पार्टनर को क्या कैसा हो चुका है, तो कभी कुछ ऐसे रूढ़िवादी सोच का सामना करना पड़ा हो?
0: नहीं सर, ऐसा ऐसा सोच का सामना तो करना पड़ता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही डे वन से, जिस दिन से मेरी शादी की बात चल रही थी, तो डे वन से हम लोगों ने इस चीज को कभी भी छुपाया नहीं कि मैं किडनी, मतलब इस चीज को हम लोगों ने आगे रख के बोला कि भाई देखो इन्होंने किडनी डोनेट करी हुई है, आप तो जो भी रिश्ते आते थे तो उनसे हम सबसे पहला क्वेश्चन यही करते थे,
1: जी
0: सबसे पहले उनको यही अवेयर करवाते थे कि ये किडनी डोनेट कर चुका हूँ मैं। तो कुछ लोगों ने रिजेक्ट भी किया, फिर मेरी मिसेज ने जो कि डॉक्टर जो कि अभी अर्चना तिवारी है, मेरी मिसेज का नाम, वो यहाँ पर संस्कृत में अभी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी है, तो
1: अच्छा
0: उन्होंने इस चीज को बड़े हेल्दी वे से एक्सेप्ट किया कि जो बंदा अपने भाई के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है तो अपनी फैमिली के लिए वो के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस पॉजिटिव सोच के साथ में उन्होंने
1: बिल्कुल
0: मैरिज मैरिज के लिए आगे आई और मैरिज हुआ। मेरे आज की डेट में दो बच्चे हैं, एक बच्चा मेरा इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़ रहा है, और मेरी बड़ी बच्ची अभी यहाँ पर रायपुर में ही बीएससी कर रही है।
1: बहुत बहुत अच्छी बात है ये, और बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी समझदारी का परिचय देते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है आपके प्रति और आपके जो काम के प्रति। तो
0: जी,
1: बिल्कुल
0: सही
1: हम भी
0: बात,
1: आपको शुभकामनाएं देते हैं इस चीजों के लिए कि आज आप एक बहुत अच्छी हेल्थी फैमिली लाइफ जी रहे हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: विवेक जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे और ब्रेक के बाद अपने शो को जारी रखेंगे और अपना शो कंक्लूड करेंगे।
0: हाँ।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं छोटे से अंतराल के बाद। हम बात कर रहे हैं विवेक जी से, और जो जिन्होंने अपने ब्रदर को अपनी एक किडनी डोनेट करी थी। विवेक जी, आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि कई लोग सोचते हैं, इवन आज के जमाने में भी सोचते हैं कि हम किडनी डोनेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी खुद को हेल्थ इश्यूज आएंगे, या फिर अंग दान को लेकर सोच सकते हैं। हमारे समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां प्रचलित है कि अगर हमने अंग दान कर दिए तो फिर हमारे नेक्स्ट वर्क में हमें अंग नहीं मिलेंगे, या फिर हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, हम मोक्ष नहीं मिलेगा, या हमारे रिचुअल्स जो अंतिम क्रियाएं हैं वो डिले हो जाएंगी। इन सब तरह के लोगों को आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे अंगदान के ऊपर?
2: अंगदान एक, जैसा कि अपनी पहले भी बात हो चुकी है, अंगदान एक महादान है और जिसमें आप डायरेक्ट किसी की लाइफ सिक्योर कर रहे हो, लाइफ बचा रहे हो। तो इसमें इस तरह की कोई मोक्ष और इस तरह की कोई चीजें आड़े नहीं आना चाहिए, और बल्कि इस चीज को बड़े हेल्दी वे से लेना चाहिए। आज की तारीख में बहुत सारे एग्जांपल्स हमको देखने को मिलते हैं कि किसी की ब्रेन डेथ हो गई है और उन्होंने अपनी पूरी बॉडी डोनेट करी है, और उसमें कई लोगों की जान, कई लोगों को अंगदान मिलता है जिसमें कि आईज से लेकर स्किन से लेकर किडनी से लेकर इवन हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट तक होते हैं। और तो ऐसा कोई, ऐसा कुछ कमजोर हो जाओगे या आप लाइफ में कुछ इफेक्ट आएगा, ऐसा मेरे को आज की डेट में 30 साल हो गए, 15 जून 2023 को पूरे 30 साल हो जाएंगे मेरे को किडनी डोनेट किए हुए। 15 जून
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी ये बताना चाहूंगा, जैसे विवेक जी ने बताया कि एक इंसान अपने अंगदान के बाद करीब 9 लोगों की और 50 से ऊपर लोगों की जिंदगियां बेहतर बना सकता है, 9 लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपके कारण आपने अपने अपनी जिंदगी तो जी ली, लेकिन मरने के बाद क्या? तो मरने के बाद जब आपका परिवार देखता है कि आपके कारण कितने लोगों की जिंदगियां रोशन हो गई, तो एक बहुत ही अमेजिंग फीलिंग आती है, और बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये काम गलत हो ही नहीं सकता जब आप इतने परिवारों की जान बचा रहे हैं। तो मैं भी आपसे यही अपील करना चाहूंगा, जैसा कि विवेक जी ने कहा कि हर इंसान को अपने अंगदान करने का फैसला जरूर करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो अंगदान हो भी पाए या नहीं, बट ये तो भगवान की मर्जी है। बट आप अपनी तरफ से अपना पार्ट जरूर प्ले करें, अपना किरदार जरूर निभाएं अंगदान के लिए। हाँ कहें, अपनी फैमिली अपने दोस्तों को इस बारे में जागरूक करें कि हाँ आपके हाँ से कितने सारे लोगों की जिंदगी बच सकती है। विवेक जी, हम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे शो में आने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए। हम आपको भी शुभकामनाएं देते कि आप इसी तरह से स्वस्थ रहें, आपका परिवार खुश रहे, और जो आपके ब्रदर हैं उनकी भी हेल्थ में सुधार आए ताकि वो अपनी आगे की लाइफ अच्छे से निकाल पाए। जी धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंगदान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंग दान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चहुं ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
4: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 25 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। आज सवेरे सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही सदस्यों ने हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा पेपर लीक मुद्दे को उठाया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति रहने के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर में पहले स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया। अभी लोकसभा की कार्यवाही जारी है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। 3,74,000 से अधिक पांडुलिपियां पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, दोनों के सक्रिय रहने पर वे उत्पादक सिद्ध होते हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पूर्व संवाददाताओं से बातचीत में श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया।
1: हमारे सदन में बहुत अनुभवी सांसद भी, दल उनका कोई भी हो, उनके पास एक लंबा अनुभव है। ऐसे समय में उनके अनुभव की, उनके ज्ञान की संसद को भी जरूरत है, देश को भी जरूरत है। और इसके लिए संसद का चलना, सार्थक चर्चा होना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही समय की मांग है। एस्पिरेशन से भरे हुए देश के युवाओं की मांग है कि हम आगे बढ़े, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे, आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे।
0: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि राजीव चौक, सेवा तीर्थ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर अब इंटरचेंज सुविधाएं चालू हैं और गेट भी खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ये रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत की गई। मामले की सुनवाई आज सर्वोच्च न्यायालय में होनी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कार्यकारी सचिव साइमन स्टिल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि बैठक में अनुकूलन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जलवायु वित्त, वैश्विक मूल्यांकन और न्याय संगत परिवर्तन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज चिशिनो में मोल्दोवा के राष्ट्रपति माया सांदू के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मिलेंगे और मोल्दोवा भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से बातचीत भी करेंगी। श्रीमती मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पर हैं। असम में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है, जिससे ऊपरी असम के कई जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल को राहत और बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। उधर पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में 90 मिनट तक संघर्षपूर्ण और रोमांचक मैच में कोई गोल नहीं हो पाया। इसके बाद स्पेन के फेरन टोरेस ने अतिरिक्त समय में गोल कर अपनी टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो, वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो।
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
1: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: आज ज्यादा हो, जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहाँ कद्र ना हो वहाँ मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए, अरे भूल गए, भूल गए, भूल गए।
1: चुप यार, पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना फूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
6: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
7: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
6: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
6: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
7: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
6: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
8: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्स पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कनमेश शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक। पहले तो हाँ सारे दा ही माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। कने तो हाँ सारी ठीक ठाक होने न कने अजकना जेड़ा दिन है सेंजोय करा दे होने न, इसी कने अपना जेड़ा ख्याल है सभी जरूर रखा दे होने न। तो जरूर अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखा कने अजकना जेड़ा दिन है से तुहंदा कदिया की गया सभी तुहां अहां कने अपनी गल जेड़े से साझा करी सकते 2 बजे तक। कने तो सारे जे पता है इस कार्यक्रम का जेड़ा समय तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। तो समय के अनुसार इस कार्यक्रम दे सफर च तुहां जुड़िया। कने अहां पहले कर दे अपने कार्यक्रम का आगाज इस प्यारे दे गीत कने, क्योंकि गीत की जेड़ा धुंद है सभी तुहां तक पहुँचाना जरूरी है। तो शुरुआत अहां करनी है इस गीत कने, कने तुहां सारे ही गीत इंजॉय करना है। कने ये भी दसना है कि शुरुआत जेड़ा से तुहां जो कदेई लगी, कने जेड़ा गीत है से पसंद आया कि नहीं आया, क्योंकि तुहां अपनी पसंद के गीत भी सुनते न। कने जेड़ा शुरुआती गीत हैं या आगाज अहां करते न सभी तुहां जरूर सुनते न। तो जरूर इस गीत जो सुनते ना

0: ये तुह सारियादापना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुह सारी इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तुह इस प्यारे दे लोक गीत जो भी इंजॉय करा दे उन्हें ये गीत आंदी जेड़ा प्रकृति दी सुंदरता है ते हजो जरूर दर्शांदा है। कन्ने सावन का महीना भी शुरू है, कन्ने इसी कन्ने बरसात का जेड़ा दौर है सभी चल रहा है, कन्ने सोन महीने दियाँ बरखा लगियाँ छम छम बरसे तशुताओं सोन महीने दियाँ जेड़ा बरखा न से जरूर लगियाँ न। कन्ने इसी कन्ने तो हम बरखा का जेड़ा आनंद है सभी लै दे उन्हें न, कन्ने अपना जेड़ा ख्याल है सभी रखा दे उन्हें न। तो इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता है न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
1: बढ़िया मैडम, धन्यवाद
0: जी। तो हां अपना परिचय दे दिया, कने कुथु दे रहने वाले न जरूर दसी दिया जी।
1: सिद्धवाड़ी दे वाला जी अशोक कुमार
0: जी। अशोक जी सिद्धवाड़ी दे रहने वाले न, यानी कि नजदीक दे रहने वाले न जी। जी जी। ता अशोक जी आज कना जेड़ा दिन है से 2 बजे तक तो हुंदा कदे आ की गया?
1: बड़ा बढ़िया दिन
0: जी। बढ़िया गया
1: जी
0: जी। तो तुहां ये गीत सुनया होणा शुरुआत जिसने
1: आ लगया बोल मैं जी। तो खीर खवाई थी, मटर पनीर खवाई था
0: जी। जी जी
1: बढ़िया बंद लगा था बढ़िया
0: जी। तुहंदी आवाज कुछ क्लियर नहीं हो दी जी, एक बारी फिर ते रिपीट कर गए अपनी जेड़ा गल तुहां बोली है। हेलो हेलो हेलो श्रोतम कॉल जेड़े से डिसकनेक्टेड होई हो ता जरूर अहां अपने कार्यक्रम दे सफर च अग्गे बढ़ना है। कने गल अहां करा दे थे इस गीत दी कि गीत जेड़ा न स्याहां जो जरूर कुछ न कुछ सिखाई करी जान दे न। अगले जेड़ा श्रोता न तिना कन्ने कर दे न गल बात। हेलो
2: नमस्कार महाराज जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न?
2: बिल्कुल ठीक ठाक महाराज जी। तुहां ब्यागा खुश करिंदे हां बजने भी की सारा दिन अहां दा बिल्कुल ठीक ठाक निकली जांदा महाराज जी। बड़े सोहने सोहने भजन सुनांदे जी।
0: जी बड़ा धन्यवाद जी तुहांदा इतना ज्यादा तुहां रेडियो गुंजन धर्मशाला जो प्यार दिंदे न जी।
2: जी
0: जी। ता तो हाँ अपना परिचय जरूर दे दिया जी।
2: मैं जी डाड केरी हॉस्पिटल बखे ते बोला था जी।
0: जी डाड केरी हॉस्पिटल ते बखे ते बोला थे तो हाँ
2: जी महाराज
0: जी। कने ना क्या जी तो हाँ दा?
2: मेरा नाम जी हरदेव है।
0: हरदेव
2: जी महाराज
0: जी। ता हरदेव जी तो हाँ गाना सुनिया तक दिया लग गया तो हाँ जो ये गाना क्योंकि हर दिन तो हाँ अपनी फरमाइशा दिन दे हाँ भी जरूर तिना पूरा कर दे पर जेड़ा हाँ शुरुआत कर दे से कदे ही लग दी तो हाँ जो कार्यक्रम
2: बिल्कुल अच्छी महाराज जी। जेड़ी शुरुआत होंदी नी वो बिल्कुल ठीक होंदी महाराज है
0: जी। की थोड़ा दिया चेंज करना चाहिदा क्या तो हाँ जो लगदा कि किस तरीके ने?
2: नहीं नहीं ठीक है महाराज जी बिल्कुल ठीक है। एक तहां दा दिल खुश होंदा जी ब्यागा करी के आ बजना सुनी सुनी करी
0: जी।
2: कहीं दिल बोलते सुनते रहिए पर टाइम मुकी जाता तो सुनते सुनते आ।
0: सही है ना कि टाइम दे अनुसार चलना बड़ा ज्यादा जरूरी है
2: जी महाराज
0: क्योंकि समय जेड़ा है ना हर चीज जो सिखाइंदा है
2: जी।
0: समय जेड़ा से कदी अह जो हसांदा भी है कदी अह जो रुलांदा भी है कदी अह जो अच्छा समय यानी कि अच्छा दौर भी दिंदा है बुरा भी दिंदा है जी। जी ता हरदेव जी और नोई ताजी डाडे दी
2: जनाब एक एक्सीडेंट होया हा डाडे दे बुंदी है पेट्रोल पंप पे वाल
0: जी जी जी न्यूज़ सुनी थी ना जी।
2: हाँ तो ऐसा बेचारी एक औरत थी इतों आई हुई अपने मिलने वास्ते इतों आई कही सर नगरोटे नीती नगरोटे वाली धर्मशाला कि कम टांडे नीती सह जाई गई तुहें मृत घोषित करी थी बस दुख होंगे पैसे मिसा गड़िया वाले दिखना चाहिए या कोई बाइका वाला चल या किसी सोटना चाहिए या गड़िया मोड़ना लगे तो मोड़ ही लेना दे फिर ही चलता है
0: जी अच्छा गलती जेड़ा से गड़ी आले दी थी।
2: हाँ जी, तो गड़ी आए ने देखा वो अपनी पीछे गड्डी मोड़ी थी तो बस वही एक्सीडेंट हुई है
0: जी
2: एकदम।
0: सही है ना कि सड़क पर चलियो जेड़ा मानू आंती ना जो भी नहीं दिखा दे या अहाँ अपना जेड़ा सही है कि गड्डी चला देना या बाइक चला देना तो अहाँ जो यही है कि अहाँ बस जल्दी जल्दी वह जगह पर पहुँचना है, पर अहाँ ये नहीं सोचते कि थोड़ा दिया आराम में नहीं चलिए, थोड़ा दिया सड़क है सड़क चाहे जो किस तरीके ने चलना चाहिए ना जी,
2: बिल्कुल महाराज जी,
0: क्योंकि हर चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। अगर अहाँ जल्दबाजी कर देना तो जल्दबाजी वाला काम कुथी ना कुथी अहाँ जो बड़े नुकसान दे करी जाता है ना जी,
2: जी
0: अहाँ जो तो दिन ही है पर जेड़ा फैमिली है उन्हें जो भी बड़ा ज़्यादा दुख होता ना
2: होना
0: जी
2: जो भी जिंदा करना सारे दुख हों
0: जी
2: है गल्ला दा।
0: जी जी जी तो हरदीप जी आज तो हाँ कुंदिया गीत सुनना पसंद करिए।
2: आज जनाब गीत सुनना, मैं जुग जियो धारा दे गुजरो। जी
0: जी जुग जुग जियो धारा दे गुजरो ना जी।
2: महाराज
0: जी जरूर एक गीत तुहां तक पहुंचा दें जी, जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहां दा
2: धन्यवाद महाराज जी।
0: जी। ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो तो शशि कन्ने ता जरूर इस कार्यक्रम दे सफर जो आगे बढ़ा देना कन्ने तो जो लेकर चल देना अगली फरमाइश दी ओर, क्योंकि तो सारे जी पता है कि ये कार्यक्रम फरमाइशी कार्यक्रम है कन्ने जेड़ा तो दियाँ प्यारियाँ प्यारियाँ फरमाइशा न सभी यहाँ तो तक जरूर पहुँचा देना, तां ई फरमाइश अहां तक पहुंची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाम है सुनील कुमार जी कने से रहने वाले न कोठियां जलोड़ ते ता जरूर तिना तक अहां ये गीत पहुंचा देना कने तुहां सारे भी इंजॉय करा, क्योंकि इंजॉय करके ताई ते सफर सुहाना बनना है ता जरूर इस सफर जो सुहाना बना देना कने इस प्यारी दी फरमाइशा जो तुहां तक पहुंचा देना।

तशो तो दो हजारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश फिर ते वापिस तो तक पूजी अपने माइकल क्योंकि तो जो भी इंतजार रहेंदे कि कालू दिया हाँ तुह तक पहुँचते हैं कने जिड़ा तो दिया प्यारिया प्यारिया फरमाइशा न सभी तुह तक पहुँचाते हैं। तो इसी कन्ने गलबात करिए अज कने दिने दी तो थोड़ा दिया मौसम पर जिड़ा इस यहाँ बार बार जानकारी तुह तक पहुँचाते रहेंगे न कने ये भी बोलते रहेंगे न कि मौसम के अनुसार चलना हाँ वास्ते कितना ज़्यादा जरूरी है या अपना जिड़ा ख्याल है से रखना कितना ज़्यादा जरूरी है। अजकने दिने की गल करिए अजकना जिड़ा दिन है से मौसम विभाग ने ओरेंज अलर्ट जिड़ा है से दसे कनेसी कन्ने कल वास्ते जिड़ा है से रेड अलर्ट जारी किते है तो जरूर तुह सारे ते जिड़ा थोड़ा दे थोड़ी देर रिक्वेस्ट की हो हूँ तुह सोचा थी होनी ने कि क्या रिक्वेस्ट जिड़ा है से की होनी है तुह वैसे तो समझी होने ने कि क्या रिक्वेस्ट की होनी है थोड़ा दिया जोर लगाई कर दिखा कि क्या जिड़ा मौसम विभाग ने रिक्वेस्ट की होंगी कि क्या जिड़ा है वो निर्देश दिते होने न कि मौसम दे अनुसार किस प्रकार हाँ अपना जिड़ा ख्याल है से रखना है। तो शो तो सारे जो पता है कि मौसम विभाग ने जिड़ा ये निर्देश दिते न कि जिड़ा नदी या नाले न तिथु जाने वास्ते बिल्कुल मना कित्या क्योंकि कई बार होंगे ना कि उपले इलाकों की गल करिए उपले इलाकों च बरखा आती होंगी कने निचले जड़ा इलाके न तिथु बरखा नहीं आती होंगी कने पानी जड़ा इस एकदम जड़ा नदी नाले न से आई जाते कने तिदा नुकसान जड़ा इस यहाँ जो भुगतना पौंदा। तो कांगड़ा जिला च जड़ा इस गल करिए तीन दिन वास्ते जड़ा ओरेंज अलर्ट कने रेड अलर्ट जड़ा इस जारी किया है 20 जुलाई यानी कि आज दी गल करिए आज जड़ा इस ओरेंज अलर्ट कने मंगलवार यानी कि कल जड़ा इस 21 कने 22 जो रेड अलर्ट जड़ा इस जारी किया है तो मौसम के अनुसार तो हाँ अपना जड़ा ख्याल है कने अपने बच्चों का जड़ा ख्याल है से जरूर रखना है कने तिना जो नदी नाले की तरफ नहीं जाना देना है क्योंकि पेरेंट्स जलू अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ताई बच्चे कुथी ना कुथी अपने पेरेंट्स की जड़ा गल है से जरूर सुनते हैं। कई जड़ा कारण हैं चाहे पेड़ हैं पेड़ों च भी कई बार अहाँ चली आते हैं चाहे से अहाँ घास लाना चाहते हैं या अहाँ बाकी अपना काम करना चाहते हैं क्योंकि किसान हैं किसान वास्ते तो बड़े सारे काम होंगे खेती बाड़ी है या घर है पशु रखे न तिना वास्ते चारा लाना है बड़े सारे काम होंगे तो कई बार अहाँ अपना जिड़ा ख्याल है से प्रोपर तरीके ने नहीं रखी पाते या तिथु जाई करी अहाँ उस चीज़ा का शिकार जड़ा से हो जाते तो इसी कन्ने जलू अहाँ पेड़ों जो चढ़ना वैसे तो पेड़ों जो बरसात के मौसम से चढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि फिसलन पेड़ों से ज़्यादा होंगी तिदे कारण भी तो हाँ कुथी ना कुथी न्यूज़ा जड़ा ना सुनते रहते हैं हर दिन तो तुहां अपना जिड़ा ख्याल है से जरूर रखना है कने अजकना जिड़ा दिन है 20 जुलाई 2026 का ये दिन तुहां वास्ते भी खास है कने हाँ वास्ते भी खास है कने जिंदगी का जिड़ा सफ़र है से हमेशा खास रहिंदा है कने जीवन च सबसे बड़ी उपलब्धि अहां वास्ते क्या होंगी हर कोई ये चाहते कि अहां जिड़ा जीवन च सबसे बड़ी उपलब्धि प्रसन्नता यानी कि अहां प्रसन्न कितना की रहिंदे न खुश रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर अहाँ खुश रहना सीखी आते हैं तो अहाँ सब कुछ अपने जीवन च हासिल कर लेंगे या अपने जीवन जो सार्थक करी लेंगे कने हिम्मत करी करी अहाँ हमेशा आगे बढ़ते हैं अपने जेड़ा हौसले न तिना जो मजबूत करते हैं या अपने हौसलियाँ जो मजबूत करी करी अहाँ हमेशा अपने सपने जो साकार करते हैं तो अहाँ जो हमेशा खुश रहना चाहिए जलू अहाँ खुश रहते न या चेहरे की स्माइल कुथी ना कुथी अहाँ जो हमेशा अगे बढ़ने की प्रेरणा जड़ा है से जरूर दिंदी है। तो बिल्कुल श्रोताओं तो सारी भी इस कार्यक्रम के सफर चाहें कन्ने जुड़ी सकते कन्ने अहाँ कन्ने गलबात जड़ा है से जरूर करी सकते गलबात करने वास्ते जड़ा अहाँ का नंबर है से तुह तक पहुँचाई देना नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते
नंबर है 701-881-7091। ये नंबर तुह तक पहुँचाई तय कने तुहदा काम में से तुहजो पता है तो अहाँ भी अगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा दे न अगले जेड़ा श्रोता न से जरूर इंतजार पर रहन तिना दा जेड़ा इंतजार है से खत्म कर दे न ये फरमाइश अहाँ जो आई है हरदेव जी दी कने से रहने वाले न चमंडा ते तिना तक कहाएगी ते फरमाइश पहुँचा।

શ્રોતાઓ, ઇસ ગાણી દે બોલ છે એ બોલ્યા કે ઠંડા ઠંડા મગડું દા પાણી કિના પીણા. તો આજકાલ તો એ મગડું યા મગડિયા હા જો દિખણે જો એની મિલદિયાં કુથી કુથી એન જેડા દિખણે જો મિલા દિયાં ને કને આજકાલ તો હા ફ્રીજ દા પાણી પીણા જેડા એસે શરૂ કરી દીયા. થોડા દિયા હા જાગરૂક હો દે, ઠીક હૈ જાગરૂક હોના ભી જરૂરી હૈ. या हाँ जो कुथी कुथी न कुथी ये गर्मी दा जिड़ा मौसम गया या उन बरसात दा मौसम लग गया तो हाँ यही सोचती ना कि हाँ जो पानी जिड़ा से थोड़ा दिया ठंडा ठंडा जिड़ा हाँ जो राहत दे. पर राहत तो से पानी बड़ा दिन दा, पर कुथी न कुथी हाँ जो नुकसान भी बड़ा दिन दा. कने आज कने दौर दी गल करिए ता कुछ हाँ दा जिड़ा स्वास्थ्य है से इस तरीके ने हुई है कि हाँ कोई भी चीज़ खाते न या ज़्यादा नहीं खाई पाते न या से स्वास्थ्य जो अच्छी नहीं लगती है या जिसका जेड़ा प्रभाव है से कुछ ना कुछ यहाँ जो नुकसान देता है या हाँ लिमिट पे ज़्यादा खाते न तब यहाँ जो नुकसान होता है. पर पहले दी गल करिए ठीक है तिच खाना भी नॉर्मल होता था, नॉर्मल बिल्कुल ही जेड़ा नॉर्मल हाँ बोलने बिल्कुल ही नॉर्मल जेड़ा खाने से होंदा था. कने इस खाने च कुछ ना कुछ जेड़ा टेस्ट है सभी जरूर होंदा था. टेस्ट दी गल करिए ता उसमें जेड़ा से है चाहे यहाँ अपने घरे च गल बात कर देना या हाँ दे जेड़ा दादा दादी हैं या हाँ दे माता पिता हैं या बाकी आसपास दे जेड़ा हाँ दे जितने भी रिश्ते न या रिश्तेदार हैं या समाज के सदस्य न तिना ते सुनने जो ये मिलता कि पहले दी गल करिए कुछ समय यहाँ पहले चली आते न तो ज़्यादातर कड़छी जेड़े से तिस तेल पाते थे कने तिस जेड़ा बीन है या हल्दी नमक मिर्च पाई करी जेड़े से तिदा तुड़का जेड़े से दाली जो लगाते थे. पर तिदा स्वाद जेड़े से बोलिया बड़ा ही ज़्यादा होंदा था. कने उड़ा हाँ टमाटर प्याज मसाले जेड़ा न से बनते बनते पाते न फिर भी सह टेस्ट हाँ जो नहीं मिलता है. पर उस टाइम दी सच्ची गल है कि लुगड़िया दा खट्टा भी बनाते थे तो उस च भी बड़ा टेस्ट होंदा था. कने जेड़ा बुजुर्ग हैं से हमेशा ये बोलते ने कि जेड़ा लुगड़िया दा खट्टा है से क्यों दे बराबर होंदा था, यानी कि हाँ दी सेहत वास्ते सबसे बेस्ट है. इसी कने चुल्ले पर खाना बनाते थे, चुल्ले पर खाना बनाते थे कने चुल्ले दा खाना जेड़ा है से उसका अलग ही टेस्ट था. मिट्टी दे बर्तन होंदे थे, प्यार भावना इक्की दुए अंदर होंदी थी. जरूर हाँ फिर थी शुरुआत जेड़े से करी सकते मिट्टी दे जेड़ा बर्तन हैं तिना च तिना च खाना बनाई सकते. कने तो हाँ बचपने दा अगर दूर याद करते न तो तुहां जो जरूर याद आई होने कि यहाँ मिट्टी दे जेड़ा बर्तन हैं से बनाते थे, छोटी दिया जेड़ा चूल्हे से बनाते थे कने तिस कने यहाँ खेलते थे. याद आया कुछ कुछ जो याद आया जरूर कमेंट करी करी तो हाँ दसना है. फेसबुक पर जेड़ा लाइव है से जरूर चल रहा है कने तो हाँ सारे भी अपना जेड़ा कमेंट है से दसी सकते कने से वाला दौर तो हाँ सारे जो ही कदिया लगता था. जरूर अपने जेड़ा मने दियाँ गल्ला न से जरूर तो हाँ साझा करी सकते कने कॉल भी जरूर करी सकते. कॉल करने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से तुहां तक पहुँचाई दे न क्योंकि नंबर तुहां तक पुजेगा ताई तो तुहां अपने मने दियाँ जेड़ा गल्ला न या अपना बचपन तुहां भी अपने बचपने च जेड़ा मिट्टी दे खिलौने या खिलौने बोली सकते या हाँ बर्तन बनाते थे, खुद बनाते थे, खुद ही तिच खाना बनाते थे खुद ही, यानी कि बचपने दा दौर बड़ा प्यारा होंदा ना. पहले नंबर तुहां तक पहुँचाई दे ना. नंबर है 7011817091. ये नंबर तुहां तक पहुँचाई ते कने तुहां सारे भी इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा. कने अपना जेड़ा बचपने दा दौर है या पुरानियां जेड़ा यादां न तिना जो जरूर साझा करी सकते. अजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, तिना खेलों का
कुथु अहाँ जो ध्यान है या तीन चीज खेलों का अहाँ जो कुथु याद है। सारे मोहल्ले दे जितने भी बच्चे होंदे से इकट्ठे होई करी गेम्स खेलते थे, अपने बचपने दियाँ यादा ताज़ा करते थे। बरसात का मौसम चलिया, ज़्यादातर अहाँ का जिहड़ा छुट्टियाँ च रहिंदा था कि मामे ने घूमना जाना है या बुआ दे घर घूमना जाना है या घर है, तो जिहड़ा है अहाँ बरसात दियाँ जिहड़ा छुट्टियाँ ने तिना जो कटते ही नहीं है। ज़्यादातर मामिया ने या मासिया ने या ज़्यादातर बुआ ली छुट्टियाँ जिहड़ा है अपने इंजॉय करते थे। पर से दौर हूँ बिल्कुल ख़त्म है। हूँ तो हर कोई अपने घर ही रहना पसंद करता है या मोबाइल फोन की दुनिया च रहना पसंद करता है। तो जरूर कार्यक्रम के सफर जो अगे बढ़ाते न कने तो हाँ सारे जो ही ले कर चलते न अगली फरमाइश की ओर, क्योंकि तो हाँ इंतज़ार करा दे होने न कि कालू दी या अगली जेड़ा फरमाइश है से तो हाँ तक हाँ पहुँचाते न, तो हाँ सारे भी अगली फरमाइश है जो इंजॉय करा।

प्रश्न तो तुह सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश यहाँ तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नावे मुस्कान जी तो जरूर मुस्कान जी तक अह ये गीत पहुँचाया कने तुह सारिया भी इंजॉय किया पखला माणू खोदड़ा पानी तो जरूर माणू तो हर कोई पखला होंगे पर जलू अह प्यार भावना एक दुए अंदर रखते न या मान सम्मान एक दुए का रखते न तो जरूर सही पखला माणू अपनापन जड़ा से अह जो देख रही जाता है तो हमेशा हर इंसान यही चाहता है कि अह एक दुए अंदर प्रेम भावना जड़ा से रखन जिन्हें कि अह अपनी दोस्ती का चुनाव करते न तो अह जो नहीं है पता कि से दोस्त कदे है या तिसदा जिहड़ा नेचर है से कदे है से तिसदा व्यवहार किस प्रकार है पर अह खुद चुनाव कर दे फिर अह अपने दोस्तों कने रहना शुरू करी आते तो अह जो पता लगता कि नहीं ये दोस्त अह वास्ते बिल्कुल सही है कने अह जो सही राह देने वाला है अगर अह कुछ अपने रस्ते पर भटक जाते न तभी अह जो अह दे जिहड़ा दोस्त है न से सही राह जिहड़ा है से जरूर देंदे न कने अह कने अपना जिहड़ा साथ है से जरूर निभांदे न पर से अह पर निर्भर करदा है कि अह किस प्रकार अपना जिहड़ा व्यवहार है से रखदे न कने गलबात अह करा दे थे कि बरसात का मौसम है कने जिहड़ा मौसम विभाग ने भी अलर्ट जिहड़े से जारी किए न तो उसी अनुसार अगर अह अपना जिहड़ा ख्याल है से रखन तो बड़ी अच्छी गल है कने बरसात के मौसम से ज़्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है चाहे से बच्चे न चाहे से बुजुर्ग हैं चाहे से हर इंसान का ख्याल रखना जरूरी है अगर तुह व्हीकल चलाते न तो व्हीकल भी थोड़ा सावधान पूर्वक चलाना है या सावधानिया ने चलाना है क्योंकि कई बार होंदा ना कि अह जल्दी के चक्कर च आप खुद जो नुकसान दे गिर जाते हैं कनाए दिन तुह कुछ ना कुछ न्यूज़ जड़े से सुनते रहते हैं जिन्हें तुह चमंडा की भी न्यूज़ जड़े से सुनी है पेट्रोल पंप जड़े से एक्सीडेंट हो महिला की जड़ा मौत है से जरूर हुई हो तो इसी कने बड़िया सारिया न्यूज़ा तुह सुनते हैं या कोई ज़्यादा स्वीट तिनी रखी हो से तिना का एक्सीडेंट हुई है या कुछ भी जड़े से हर दिन तुह सुनते हैं तो इसी अनुसार अपना जड़ा ध्यान है या ड्राइविंग तुह करा देन तो थोड़ा आरामे ने कर पाँच मिनट लेट हो जाते न तो कोई चक्कर नहीं लेट हो जाएंगे खुद जो नुकसान तो नहीं होगा हर चीज़ का ख्याल रखना तुह का काम है पाँच मिनट अह खाना खाना लेट हो जाते न कोई बात कोई गल नहीं तो सही है ना कि थोड़ा दे अपना ख्याल रखने की भी जरूरत है पर तुह खुद रख गए ताई तो तुह पेरेंट्स भी अपने बच्चों जो जड़े से जरूर समझान कि तुह व्हीकल चलाना है तो थोड़ा रामे ने चलाना क्योंकि रामे ने चलाएंगे ताई तो तुह सेफ अपने घर है जड़े से पहुंची सकते कने हर कोई यही चाहता कि अह हमेशा खुश रहन तंदुरुस्त रहन फिट रहन क्योंकि शरीर जड़ा है ना से अह वास्ते सबसे बड़ी दौलत है या धन अह बोली सकते अगर ये धन दौलत कुछ भी नहीं है अह दा शरीर ठीक है ना तो सब कुछ ठीक है कने अगर शरीर ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है तो इसी कने अह अपने कार्यक्रम दे सफ़र जो अगे बढ़ाते हैं कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर ही चलते हैं ये फरमाइश अह तक पहुँची हुए व्हाट्सएप के माध्यम ने तिना दा नाव है राधा कश्यप जी कने से रहने वाले न कांगड़े ते तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचा देना जितने भी बाकी श्रोता न सभी इस फरमाइशा जो इंजॉय करा।

આંબોલા દેને રેડિયો ગુંજન ધર્મશાલા તે કને તોહા સારી ઇસ વખત કાર્યક્રમ સુણા દેના આપની રેડિયો તો શશિ કહેને તશ તો મોસમ મોસમ ભી હા જો બડા કુછ સિખાંદા હૈ પર હા મોસમ તે સીખ જેડા સે લેન દેન અગર હા છોટી દે લાઈના જેડા ન સે તોહા તક રખન કલ જેડા સે ધૂપ થી કને આજ જેડા સે બરખ હૈ वैसे तो बरखा जड़े से लगातार लगी हुई है दो तीन दिन हुई है ना पर हाँ जड़ा कुछ लाइन है ना से ज़रूर तुह तक पहुँचा देना। बारिश जड़े से होना शुरू हुई है। मौसम भी यहाँ जो सिखाई करी जानता है कि हमेशा जड़ा वक्त है से एक दिया नहीं रहता। हर चीज़ जड़े से बदल दी है चाहे से वक्त के अनुसार बदले पर ज़रूर बदल दी है। जिन्ना हंदा मौसम बदलता है जिन्ना हंदिया रुत्ता बदल दिया है ना कुदरत दा नियम है। मौसम बरसात चली हो है तो बरसात दा मौसम भी आंदा है फिर इसी कन्ने सर्दियां दा मौसम भी आंदा है फिर गर्मियां दा मौसम भी आंदा है तो रुत्त जेड़ा ऐसे चेंज होती रहती है। उसी प्रकार वक्त जेड़ा ऐसे एक ही दिया नहीं रहता। वक्त कई बार अहंदे जीवन च अच्छा भी आंदा है या बुरा वक्त होगा तो से अह जो कुछ सिखाई करी जाता है से वक्त भी निकली आंदा है फिर अच्छा वक्त आंदा है सभी अह जो कोई सीख दे करी जाता है पर हाँ जरूर इस मौसम ते भी सीख देन या अपने वक्त ते भी सीख देन या जिहड़ा अनुभव आन से अह जो क्या क्या मिलते हैं बुरा वक्त है तो बुरा वक्त अह जो ये सिखाई करी जाता है कि अपने जेड़ा ना से अहां दा कितना की साथ दें न अच्छा समय है तो अच्छे समय च तो हर कोई अह दा साथ दिंदा पर बुरे समय च अह दा कौन जेड़ा साथ है से दिंदा है से समय जेड़ा है से अह जो सिखांदा है पर अह किस प्रकार सीख लैंदे न से अह पर निर्भर करदा है क्योंकि जिंदगी दा दौर है जेड़ा इंसान यह दुनिया चाहिए है तिनी जाना भी है पर अगर हाँ इस जेड़ा लम्हे न तिना जो इंजॉय करी करी जानते न या हर दिन जो इंजॉयफुल बनाते न तो बड़ी अच्छी गल है तो इसी कन्ने इस कार्यक्रम दे सफ़र जो भी तुह इंजॉय करा दे होने न कने जेड़ा फरमाइश है न तिना जो भी ज़रूर इंजॉय करा दे होने न इसी कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश या अगला जेड़ा गीत है से तुहां तक पहुँचा देन। वैसे भी आज जेठे दा पहला सोमवार यानी कि बड़ा सोमवार है संक्रांति ते पहले पहला सोमवार है या तो तुहां जरूर व्रत भी रखे होने न कंसावन दा पहला सोमवार भी है तो जरूर ये गीत ये फरमाइश तुहां तक पहुँचा दे।

ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो श्रोताओं तो हाँ सारे सुनिया ये प्यारा दिया भजन समय जेड़ा है स्याहल थोड़ा दिया है तो इसी कन्ने कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ाते इन कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते इन्हें।

कार्यक्रम सुना दी थी अपने रेडियो दो शशि कन्ने। इसी कन्ने तो सारी अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति, क्योंकि कार्यक्रम का जेड़ा सफर है सेहत ही संपन्न होंगे। तो इसी कन्ने तो सारी ही अपनी रेडियो दो शशि जो दिया अनुमति हमेशा खुश रहा।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा खाना एक साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कई बार।

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ
1: डॉक्टर।
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
6: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
7: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

94 मेगाहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। श्रोताओं, कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुराने, और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति और आप हमें सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो गुंजन धर्मशाला। फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो गुंजन धर्मशाला, फ्रीक्वेंसी है 91.2 FM। ये सुहानी नई पुरानी कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहानी नई पुरानी 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए। लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
3: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आंख में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। औरत की आंख बांस शान में हमारी बेटियों का योगदान है।

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो पूरा

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
6: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
6: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
7: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आओ।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला दो है सभी ट्यून कर रहा और आओ सचिन कपूर हाजिर बुजुर्गो कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। हाँ सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा, क्या हाल चाल रहे श्रोताओं तुम दे, उम्मीद कर लो कि तो सब खरे बुने खुश बुने और बखूबी तंदुरुस्त भी भुने हैं, जो कि खुश रहने तंदुरुस्त रहने की सो अक्सर वालों बहुत जरूरी है, बहुत अहम हाँ। तो लाइव कार्यक्रम तुम दे वीडियो सेट में हम लेकर हाजिर हुआ हा और कार्यक्रम मंच तो सब श्रोता हंसू के जुड़ सकते हैं, अपना पसंदीदा गीत होने सकते हैं जी रोजाना होने देन और अपनी क्षेत्र जानकारी किया सो होगी साझा कर सकते हैं श्रोताओं, कुछ एक जानकारी के अनुसो हंसू भी तुसो की जरूर शेयर करनी हिन साझा करनी हिन तति वास्ते श्रोताओं तो है ज़रूर हाउ होगी कि सो मिल सकते हैं जुड़ी सकते हैं और कॉल कर सकते हैं जनाब 7018879 पर नंबर आक मुके फिर शेयर करना साझा करना 7018879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होने सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अगोगी साझा कर सकते हैं। बहरहाल इन दे पहले श्रोतागण असोगी कनेक्टेड हिन पोस्ट दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू कर दे हिन हेलो नमस्कार जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: आओ आरु बल्लू दिया
0: आरु जी कड़ियों बल्लू दिन तो है
1: खने आ रहे हूँ।
0: अच्छा और सब ठीक ठाक में खने रहे आ रहे
1: हाँ जी।
0: अच्छा आरु जी कस स्कूल है पढ़ दिन तो है कुंडीनी क्लास में पढ़ दिन
1: डीएवी स्कूल है पढ़ दिन धर्मशाला
0: डीएवी धर्मशाला। अच्छा क्या बात है और कुंडीनी क्लास है तुम दे छेमी अंदर चलिए तारू जी कहना तो हूँ कर दिन तो है अपना गादा कार्यक्रम
1: बड़ी साल बीत गया।
0: अच्छा कुंडने गीत होना पसंद कर ले
1: जोन सारी है
0: जोन सारी है
1: हाँ जी
0: जोन सारी है गीत नाटी है। अच्छा ठीक है जी नाटी जोन सारी है जरूर तुसु होने ले धन्यवाद जी वेड़ी गुंजन सो की कनेक्ट होने वास्ते
1: धन्यवाद।
0: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम में समय दी अपनी गप्पा गेंद सो बिल्कुल लाइव चल रही थी सभी रे रेडियो सेट में तो है सब बस वो कि जुड़ सकते हैं कनेक्ट हो सकते हैं 7018879 पर नंबर आक मौके फिर तू हो गया शेयर करनो हाँ साझा करनो हाँ 7018879 श्रोतो बोल देना कि पैसा पैसा गया सो बेशक घट बोआ इंसान लेना तू ना करे भी बोआ कि इंसान अपनी बेसिक नीड कैन सो पूरी कर सका है ना जी खाई सका त्राई टाइम खरा खाई सका है ना चलो घूमे फिरी सका माड़ा मोटा है ना पैसा बेशक घट के सो जाचिकंदा हाश हो तो लेकिन सुकून की असो चाहिंदा जिंदगी में शांति की असो चाहिंदी जिंदगी में मानसिक तनाव किया सोना चाहिंदा जिंदगी में है ना कि पैसा भी छोड़ा और मानसिक तनाव किया सो भी बड़ा ज़्यादा हा तो सो इंसान किया सो ना चाहता हा सुख शांति बड़ी मैटर कर दी हा लाइफ में शो तो तुसूले पैसा बड़ा भरे और तुंदी लाइफ में सुख शांति ने किसी गल्ला जो लेकर तुंदे परिवार में सुख शांति ने या तुंदे अपने एनवायरनमेंट में आस पड़ोस में एनवायरनमेंट में सो मतलब टॉर्चराइज तुसू मंच तुसू लेकर हाँ तो फिर सो पैसा किया सो ये लगता कि मतलब कुछ भी नहीं है ना रे बराबर और बेशक तो है दो टाइम त्राई टाइम खाना खान शांति होगी खान खुश भूचे करे खान परिवार सोगे सो भी किया बेशक बलदे ना सियाने बलदे थे कि बेशक तो है लूणा होगे खान सो भी खरा लगन था अगर जिंदगी मंज किया सो शांति हा था, जिंदगी मंज किया सो सुकून हा था। हम सचिन कपूर हा तुंदे वीडियो सेट में हाजिर हा बिल्कुल, और फेसबुक रे माध्यम तो भी बिल्कुल लाइव हाजिर हुआ हा। अनेकों जानकारियां है हर रोज तुसु तक पहुँचन दे हिन छोतों, और एक खास गल हा कि अपनी गदयाली बोली मंज पहुँचन दे हिन। आज फिलहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ते हैं, आज कुछ खास और भी है, सो तुसु अगले लाइव में किया सो जरूर दस ले बने रहे। तो सब आर जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रहे, और गूंज जितने भी प्यारे प्यारे श्रोता सो की बन रहे भुंदे हैं जुड़ रहे भुंदे ने त्यारे सब बेरे श्रोतो आइया लेकर चल दे तू सब भी जो इस गीतारी किनारी फरमाइश आरा दौर किया सोता सु जरूर पूरा करना ना श्रोता। तो सब श्रोता के सो फरमाइश तो जरूर दे सकते हैं ना 7018817091 पर नंबर अक मुख है फिर हूँ तू होगी साझा करीनो शेयर करीनो 7018817091 पर तो सब श्रोता अगे जुड़ी सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं। चलिए था कर देना आगाज कार्यक्रम रे इस गीता सो गेशो तो

0: शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला और हम तो अपना आर जे वेडियो जो कि सचिन कपूर हा कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आऊँ हाजिर बुआ शोतो अक मुके पुरा तुंदा सबीरा बहुत बहुत स्वागत करनो हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ आइए जी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा तो सब हुण करदे ने अपने अपने वेडियो सदमा वेडी गुंजन धर्मशाला मंच और अनेकों जानकारी लेकर ही आऊँ हाजिर हुआ तुंदे सभी रे रेडियो सदमा और फेसबुक रे माध्यम थो तुंदे फोन नंबर भेज सकता हूँ। आइया कार्यक्रम जो हगो बढ़ जे कि तो सब जान देने इस कार्यक्रम में तुसु अपनी बोली अंदर के आसो यह जानकारी भी पहुँचन दे हिन सोगी सोगी अपने जो इन दे गीत हिन सो भी तुसु तक कह सो पहुँचन दे हिन गदयाली गीत भी पहुँचन दे हिन और सोगी सोगी जो इन धर्मशाला क्षेत्र है या भरमौर क्षेत्र है या अन्य किसकी स्टेट रहे मनु असु की जुड़ते हैं सो भी है फेसबुक रे माध्यम तो कोशिश कर दें कि आज भी किया सो रेडियो मंच से इतने सारे श्रोता के सो जुड़ते हैं श्रोताओं बहरहाल इन अगले श्रोता सो की कनेक्टेड हैं। नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू देन
1: मेरा नाम दक्षा बिल्ली बल्ले कर दा।
0: क्या बात है क्या बात है लक्षु ना दसो तो है अपना ना।
1: हां जी
0: लक्षु जी पिल्ली भरमौर थों तो है भरमौर थों ना।
1: हां जी
0: भरमौर। अच्छा आप जो भरमौर रख दे है मौसम
1: बदला
0: बदला पूरा बरखा लग रही है कि ना लग रही है लक्षु
1: ना लग रही है
0: ना लग रही है।
1: हां जी
0: स्कूल लोग छू रहे थे ये तो है कि छुट्टी पियो रहे तो सो भरमौर साइड
1: छुट्टी पियो ही ना
0: छुट्टी ना क्या बात है दसो तो होगी भरमौरा थो भरमौर अक प्यार दे ग्रह पिली तड़ी थो के सो अक्षु जी जुड़ रहे हैं इन इस गादे कार्यक्रम रा कमाल की आऊँ गल करो ही करदा थो कि ऐसो गे कि ऐसो धर्मशाला थो पालमपुर थो जे एंड के थो भरमौरा थो कहना अब वो गे कि ना सो जुड़ते हैं इन दे श्रोता।
1: मैं तो सीबर टैप पर वीडियो भेज रही ही।
0: अच्छा क्या बात है अक्षु जी क्या बात है इस नंबर पर भेज रही थी ना।
1: जी
0: चलिए अक्षु जी तुम दे सो वीडियो के असो असु जरूर हेडने आफ्टर लाइव और ए वीडियो तुम दे असु जगह जगह के असो पहुंचाए देने अबे
1: हां जी
0: कि तो है अपनी बोली मंज की असो इतनी अच्छी कविता तो है रिप्रेजेंट करी थी रेडियो गुंजन मा तुम दा बड़ा शुक्रिया करदा और ये अक्षु जी हगू बढ़ दे रहे तो है ना अपनी संस्कृति जो लेकर खास करे यहाँ ही किया सो हगू बढ़ दे रहे
1: अंजी मेरे फरमाइश है कि कुग तीरे बासी मेरे के लंगारा भजन लान
0: कुग तीरे बासी
1: अंजी
0: ठीक है अक्षु जी जरूर तू सुए गीत है हुन ले और कार्यक्रम अच्छा घर अंदर कौन कौन हुन देन तंदे
1: सब जी
0: सब हुन देन
1: अंजी
0: अच्छा खरा लगदा सब भी हो
1: अंजी
0: कुतुने खुश बुंदन के अपना गादा कार्यक्रम चलिया
1: सब जी
0: ना कितने करी खुश बुंदे मिलू बड़े खुश बुंदे ने मनो अपने करिए तुम दे
1: बड़े ज्यादा
0: चली जी सब सभी घर वाले ओके सो मे भी और तो सचिन कपूर री और तो हाथ जोड़ी करी नमस्कार और तुस अक्षु जी है भरमौरा तक धर्मशाला थो भरमौरा तक आवाज किया सो जरूर हुन ले केलंगारा वासा गीत जरूर हुन ले धन्यवाद जी
1: धन्यवाद।
0: शोधो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर है वेडी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर रतन द अपना आर से वेडियो चौकी था हेरो आऊँ गल करो ही करता था और तेई ऐसा हो गया ना सो भरमौरा था इन द श्रोतागण और यंगस्टर अली बच्चन मतलब है ना सो जुड़े गया है इन श्रोताओं ता चलिए ये बहुत अच्छा लगता कि अपना जो यूथ था अपने जो मतलब अपकमिंग यूथ था या फिर सो अपनी बोली अंदर गल करना है ना बड़ी खुशी बनते हैं कि चलो असु अंग्रेजी भी बोलने हिंदी भी बोलने हाँ लेकिन अपनी संस्कृति हो गया है जुड़ रहे हैं अपनी विरासत हो गया है जुड़ रहे हैं ये बहुत बड़ी गल असु सभी वास्ते है ना। कार्यक्रम जानने जानकारी के श्रोताओं सो भी तुसु तक असु जरूर पहुँचानी हैं लंबेर से बाद गए सो कांगड़ावी सड़क पर उतरू करते हैं कोई पुलिस रा कप्तान जी बिल्कुल एस्पेरिया गल करूँ करता कुल हाँ कुलभूषण वर्मा रिया गल करूँ करता हा जो कि अब सड़क पर भी उतरू करते हैं और जनता रा आँख मुके फिर कि सो भरोसा जागो हा और इसी सो के शतों सो जो एसपी हिन इंदे धर्मशाला में जो एसपी ने सो मतलब फील्ड पर उतरू करते हैं और अपने आप के तिन्या सो फील्ड पर उतरी करे कमांड किया सो संभालू करते हैं और ऐसु सभी वास्ते किया सो बड़े अच्छी गल हा शो तो हिमाचल प्रदेश रे पर्यटन राजधानी धर्मशाला वे इन्या दिन के सो अक नोआ प्रोएक्टिव चेहरा के आसो हेरने जो मुड़ करता हा शतों लंबे अरसे थो बाद कई पुलिस अधीक्षक एसपी दफ्तर रे दफ्तर थो बाहर कहने सो निकले हैं और ग्राउंड पर कहने सो अपनी भूमिका निभाव करते हैं शो तो है ना नहीं तो एसपी उसपी ना इन दिन बार अपने ऑफिस में किए सो बेख रहे लेकिन कुलभूषण वर्मा के आसो इस समय निकलो करते हैं और बिल्कुल बहुत इति थो बहुत चीज़ें कहने सो क्लियर भी बुझी गंदे इन शो तो बहुत थे पैटर्न के अनसो क्लियर भी बुझी गंदे है ना जी तो ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट के आसो जारी हा और तुसु दसना चाहते हाँ उपायुक्त बल्लू करते हैं इन दै कि 24 घंटे जिला तथा उपमंडल स्तर पर के आसो खुले रहन इन कंट्रोल रूम नदी तय नालरी किनारी की आसो नागाना हाँ अज तू पता अज भी रेड अलर्ट जारी कर रहा और दत्ते भी किया सो रेड अलर्ट डीसी साहब भी जारी कर रहा ये पूरी जानकारी तू हो गया जरूर साझा कर ले शो तो बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो गे और आइए फिलहाल है फरमाइश दौर किया सो पूरा कर लेंदे जनाब

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो सब ये ट्यून कर रहा और आऊँ सचिन कपूर तो सो गए तुंद रेडियो सेट में बिल्कुल हाजिर हाँ, बिल्कुल लाइव एक कार्यक्रम चल रहा। तो सब श्रोता रोजाना ही जुड़ी सकते हैं, रोज जी जुड़ते थे जुड़ी सकते हैं 7018 8 8 7 0 9 8 पर कॉल करे करे। चलिए जीता अगली जानकारी दू हो गया हूँ शेयर करना चाहूँ हाँ जे कि यह सब जान दिन बाखूबी जान दिन कि आज की सो छुट्टी दे तुरे थे श्रोता हूँ हाँ डी सी साहब है कुछ कोई धर्मशाला में वेड अलर्ट किया डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में गया सो वेड अलर्ट जारी कर रहा था श्रोता हूँ। इसे सो क्या दसना चाहता कि दत्ते भी किया सो छुट्टी हाँ और अब इली अक गल किया सो बड़े मुझो मेरे जहन में आया कि चलो जिया जस स्कूलर है प्रिंसिपल और स्टाफ है ना सो ठीक नतीजा था मतलब देते अपने अपने स्टाफ पाले हो छुट्टी और देना भी चाहिए देखा जो कि मुझे ये लगता है कि मतलब जो भी रन करूँ करता ना जितने भी इंदे जो सहयोगी बुंदे हैं जो भी वर्कर्स बुंदे हैं त्यारी वजह था उनके आसो काम कार के आसो चलता है ना। और अब इड़ी थोड़े करी गाल मुझे ये वो लगी हाँ कि हाँ तू दसना चाहता कि दत्ते भी छुट्टी परोए भी छुट्टी हाँ डी सी साहब भी बोल रहा हा। और अगर कुछ ऐसी आपदा चली इंदी या कुछ भी ऐसा बुंदा था तो ये सब टोल फ्री नंबर में 1077 में किया श्रोता हूँ सो कॉल कर सकते हैं। अब गल किया श्रोता हूँ दसना चाहता मौसम भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला द्वारा किया सो 21 जुलाई वास्ते किया कांगड़ा जिला में भारी थों अत्यधिक भारी वर्षा रा रेड अलर्ट किया सो जारी करो हा जारी करने थों बाद जिला प्रशासन ने किया सो एतिहायत कदम के अनशतों सो चुके हैं। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रे अध्यक्ष हेमराज भैरवे किया सो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 री धारा 3 रे तहत आदेश जारी करें कि जिला रे सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान किया सो 20 और 21 यानी कि आज तय दुत्ते जुलाई जो किया 20-21 जुलाई जो किया सो बंद रहने हैं। इड़ी तक तो सभी जो पता कि हाँ बंद रहने हैं है ना। इतों बाद होना कि आदेश अनुसार जिले वे सभी सरकारी एवं निजी स्कूल शिक्षण संस्थान तकनीकी संस्थान महाविद्यालय विश्वविद्यालय CUA सभी परिसर किया सो बंद रहने हैं। निफ्ट कांगड़ा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तथा आंगनबाड़ी केंद्र के ये सब बंद रहने हैं। जिलाधीश किया सो शिक्षण और प्रशासनिक स्टाफ जो भी किया इन्हें 2 दिन जो स्पेशल छुट्टी किया सो घोषित कर रहा। लेकिन कई निजी स्कूल अंदर के निंदे धर्मशाला मंच भी किया सो कई निजी स्कूल स्टाफ जो किया सो आज भी हद्दू कर दे हैं। और ये DC साहब रे जो आदेश न त्यारा उल्लंघन हा बिल्कुल और आऊँ चाहूँ कि इस आदेश पर किया अगर DC साहब रे आदेश पर कोई ना मनु कर दें स्कूल है ना त्यारे आदेश पर तो आऊँ चाहूँ कि इस खबर जो तो है जल्द तो जल्द जरूर पहुँचान का जो कि आऊँ अपू आज कसकी निजी स्कूल में आ गया सो मैं आऊँ गुछूरत हूँ और तरीके सो स्टाफ काम करू कर दा थू। बहरहाल शायद ये लगता कि DC गड़ी इड़ी हेरना जो इना या कुछ भी लेकिन अगर जहने राजा वल्लों करता जिले रा राजा बुंदा DC त्यारे आदेश ने त्यारे आदेश रा पालन ना करना तो अगर यह रूल के सो ना समझो कर दें तो ऐसू बच्चों के समझाना कि क्या रूल बुंदा है क्या रेगुलेशन बुंदा है ना। पहले ऐसू त्यारे रूल और रेगुलेशन पढ़ता सो अभी तक खरा उतरना चाहता है ना। 2 दिन दोते भी किया सो छुट्टी भी होना चाहते हाँ निजी स्कूल अंदर श्रोता हूँ। तो बहरहाल कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंदन आऊँ चाहन होगी इस खबर जो कि सो ज़्यादा तो ज़्यादा तो है कभी बलता नहीं लेकिन ज़रूर शेयर करना और ज़रूर आगू तक रे खबर के सो ज़रूर पहुँचान। और चलिए जी इंदे श्रोता का ना सो कनेक्टेड है पुछ दिन कौन बल्लू दिन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: हाँ जी नमस्कार प्रसन्न जी
0: हाँ जी जी कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन
1: ए तपो बनते वेदो राम
0: अच्छा अच्छा तपो बनते सफेदो राम जी
1: हाँ जी हाँ जी सर
0: सफेदो राम जी कौन दिन गीत सुनना पहले दे दसी दे तो है
1: एक गाना चले है ना पता नहीं पहाड़ी है कि हिंदी है गाना ना
0: हिंदी तो नहीं हो सकता, पहाड़ी जरूर होना। इले तू सुए है
1: एक गाने दे बोल है ना, गुरु ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ जा नहीं बंदे आ सवेर हो गया।
0: गोरे नहीं चलाया,
1: गोरा ने जगाया बंदा फिर सो गया, उठ जा नहीं बंदे आ सवेर हो गया। ए रेडियो में सुने हाँ मैं गाना है।
0: चलिए ठीक है जी, गोरा ने जगाया बंदा शेर हो गया,
1: फिर सो गया, उठ जानी सवेर।
0: नहीं गुरु जी थोड़ी देर आस्ते बल्ला तो है, और शब्द जो तुंदे शब्द मिंजो तक क्लियर ना बुझू कर दे हिन।

0: घोड़ा ने जगाया बंदा,
1: फिर सो गया,
0: शेर सो गया,
1: हाँ जी, उठ जानी बंदिया सवेर हो गया।
0: चलिए ठीक है जी, अगर मुलदा तो जरूर होना ले तो सोएगी इतना जी।
1: हाँ जी
0: धन्यवाद।
1: ठीक है,
0: श्रोताओं तो सब बन रहे हैं समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला में। और एक और जानकारी तो वो गया हूँ बिल्कुल शेयर करना चाहूँ हाँ, दाड़ी अपने इधरी सिद्धबाड़ी में किया श्रोताओं, सो पिछली रात तक हादसा बछूरा, दो युवक के ने सो काफ़ी गंभीर तरीके के कहने सो घायल बछूरे थे पिछली रात। और हम अक्सर बोलनो कि दो पहिया वाहन वाले जो कि सो बिल्कुल धीमा चलना चाहिए था, जो कि बरसाला लग रहा और बिल्कुल भी भरोसा ना बनता है ना, बिल्कुल भी भरोसा ना बनता। और जर तक रस को जानकारी मुड़े कि सो थोड़ी करी स्पीड में थी है और तीनिया जो कि सो लेकर टांडा ले गए थी है, जो टांडा लेकर गए थे सो भी अपने भाई ने शेखू त्यारा ना आनंद शेखू तीनों बलदे हैं, सो अपनी गड्डी में पाई करके सो टांडा तीनों लेकर चले गए थे। और इसी सो की अगली जानकारी तो वो कि शेयर करनो कि धर्मशाला में पिछले कल धर्मशाला में दाढ़ी माँ के महिला द्वारा किया सो आत्महत्या भोई हाशो, तो मामले में अपविजन है कि सो अनोखा प्रदर्शन कर उचित न्याय री मांग किया सो मंगे है। हाँ, रिलेशनशिप बहुत मैटर करते हैं, बार बार बोलना हो कि रिश्ता संभालना कि है ना जनाब, सो धोनी हद तरह काम बुंदा कसकी अक्की हद तरह काम ना बुंदा। और जने रिश्ता बिगड़ते हैं ना तो तहने ये ना है बल ले सकते कि कसकी अक्की बंदे रे गलती है और दुआ बंदा कि सो बिल्कुल ही ठीक है या बिल्कुल ही सच्चा सवित्रा है। हाँ, कुछ टाइम तक बुंदा है कि रिश्ता निभाने की कोशिश बुंदे है, लेकिन तत्थों बाद जहने इंसान अक मुके गलत बुझ गच्छा तो फिर सो गलती री राह कि सो पकड़े ही लेंदा है। बहरहाल कार्यक्रम जो है हगो बन देन और अगली फरमाइश के सो पूरी कर देन।

श्रोताओं तुंद अपना वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊँ सचिन कपूर हा वेड़ियो गुंजन धर्मशाला तो बल्लू करता हा और तो है हुनु करते ना अपना कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा इस कार्यक्रम रा ना जरूर श्रोताओं है तुसो के लाइव जुड़ करते हैं और जानकारी भी तुसु तक पहुँचाओ करते हैं और जो इन श्रोता सो के कनेक्ट बुनते हैं श्रोतों सो भी तुसु तक रह जरूर पहुँचाओ करते हैं। बहरहाल तो तुसो नंबर त याद भुजे गो मुना 8077 पर तुसु कॉल कर लेने हैं अगर तुसु लगता कि ये आपदा प्रबंधन केंद्र रे टोल फ्री नंबर है और तुसु लगता कि अगर खा तत्काल जरूरत आता 8077 पर कॉल जरूर कर लेने हैं। बहरहाल अब दुई खबर री किनारी की सो इन दिन श्रोतों जड़िया है दसो कि दाड़ी रिया की महिला के ना महिला के सो सुसाइड करी लो है त्यारे परिजन हो गए जो है गलबात होने सो ये बल्लू करते हैं कि इनकी बेटी किया सो बचपन तो बहुत मेहनती थी और सो मतलब पाई पाई जोड़ी करी गया सो कमाना जानते थे पैसे री अहमियत जानते थे और परिजन अनेकों गल के सो बल्लू कर दें यानी कि कुड़ी आए जो हैं सो बल्लू कर दें कि इनकी बेटी की सो इस प्रकार रही थी और आत्महत्या तो दूर दूर तक ना थे सो कर सकते लेकिन त्यारे आरोप किता है ता आत्महत्या करे किता हो प्रताड़ित किया सो करेगो हा और ताहो फ्रस्ट्रेट किया सो भोय हा हरास किया सो भोय हा और हरासमेंट रह चक्कर माँ फ्रस्ट्रेशन रह चक्कर माँ किया मानसिक टॉर्चर रह चक्कर माँ किया सो एट लास्ट फिरे तहे सुसाइड करो और सारी बहनी रख जो बयान आ सो भी बल्लू करते हैं कि अगर स्वस्वोगी इस प्रकार री गल साझा करीन दे तहे इस नौबत जो तक कदी नहीं ना दिन दे हाँ वाकई मैं सब ये बल्लू कर दें क्या हो गए क्या सो गल लेना शेयर करी कुड़ीरा जो फादर साहब हैं तिन्या भी ये गल बल्ले आ कि मुझे होगी मेरी कुड़ी ये गल शेयर ना करे अब गल शेयर को ना करे कजो कि सो बल्लू ये बल दे थे कि मतलब मेरे ला मैरिज अतः मैं आऊँ अपनी लाइफ रा डिसीजन किया जो भी है खरा बुरा सो मुझे हो गया हाँ तो एट लास्ट मतलब सोए हम हमेशा बोलो फ्रस्ट्रेशन चले आए है ना रिश्ता रिश्ता हम हमेशा बोलो छोतो कोई भी बगाने घर तो है कसियो भी लेन दे ना तो त्यारी रिस्पेक्ट करना तियाँ समझना त्यारी फीलिंग्स जो केयर करना ये पहला इंदा दायित्व बनी गंदा है क्योंकि त्यारे घर रा इन्वायरमेंट अलग है त्यारे घर रा माहौल अलग है और यह इस पर अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग और ख़ासकर पति पत्नी और पति रे घर आड़े जो हिन त्यारे जहाँ को हो रहे त्यारे अंदर सो अंडरस्टैंडिंग की सो बहुत ज़रूरी है ये समझना बहुत ज़रूरी है श्रोतों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर तुंदे अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो रिलेशनशिप खराब होंगे और फिर कुछ प्रकार रे जिंदगी में मोड़ इस प्रकार चली दें सोते हूँ कि कभी सुसाइड पुछे गंदे तो कभी कुछ और पुछे गंदा सो बहुत सारे ऐसे केसेस रुए खासकर जो दोगना है गुंजन में लोग रुन गुंजन वीडियो में तो दोगने तो है बहुत सारे ऐसे केसेस हेरुन ईडी भी हेरुन होरदा भी है हेरुए है ना कि इस प्रकार री चीज़ा के सो बुंदी लेकिन जो थोड़ा करी मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ रहा सो ये बलदा हा कि अगर तुंदे बीच में अंडरस्टैंडिंग है हेरा अगर दुई गप्पा लाड़ी री या नौका री तो है मन्नी भी ली तो कोई आफत नहीं है लेकिन नौका जो बेड़ी बिल्कुल अंडरस्टैंड करना चाहता कि तुसु भी किया सो गनी है री चोर गप्पा मननी हिन है ना चोर तो है मनी दुए है मनी था कॉम्प्रोमाइज़ किया सो लाइफ में पुछ गंदा लाइफ बड़े आसान तरीके हो गए कि सो चली पे हाँ लेकिन ये है कि अक्की प्रकार अक्की अक्की अगर रह सोचना अक्की सोच रखन कि आना जी असू ये करना तो ये करा ये नौका ये करा तो तड़ी गया सो आजकल ज़माना कुछ और इस प्रकार हो कि रिलेशनशिप के अंसो खराब होंगे लेकिन बहरहाल इडी जो है गल कर करते हैं जब दाढ़ी वे महिला के सुसाइड करो हा दो कुड़ी हिन और अक फर्स्ट में पढ़ दे आकर ले स्कूल लगाना लगे बोलो तो ये मामला गंभीर मामला है और कार्रवाई तो ज़रूर होना चाहिए है ना अगर फ्रस्ट्रेशन भी है प्रताड़ित भी सो करे हा
कजो कि इंसान जो मरने वाला इंसान है सो लास्ट ऑप्शन मरना ताई रखता कजो कि ता हो दस प्रकार रहा सो तह सब कुछ फेस करू रहा बुंदा हा ता सोचता इंसान की अपनी जीवन लीला क्या सो आऊँ खत्म करे छू कार्रवाई जरूर होना चाहते हा। बहरहाल कार्यक्रम जो है आगो बढ़ते हैं तो है सब बन रहे ने समय आर जाए सचिन कपूर सो गया और आइए जी लेके चल दे तू सभी श्रोता जो इस गीत तारी किनारी

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेरी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रॉ रे कार्यक्रम हिंदी अपने गप्पा कहना सो बिल्कुल लाइव चल रही है श्रोतो 7018 7098 पर नंबर अक मुख्य फिर आऊँ तू वो कि शेयर करनो साझा करनो हाँ 7018 8078 7098 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं से जरूर हो नहीं सकते अपने क्षेत्र जानकारी किया सो जरूर साझा कर सकते हैं श्रोता जानकारी या केस जो

फील किया सो जरूर बुंदा हा। ए पालमपुर रा केस हा, बरहाल ए पालमपुर रा केस जो मुंजो कॉल छोरे थे और तिंगिया ये दसो थो कि परिवार मंच किया सो पिता है निन माँ माँ तुसु होने करे हैरान बुझेगा ना हा कि माँ अपने बच्चे रे नशे पूरा करने वास्ते किया सो नरेगा माँ दिहाड़ी लाओ कर दे हा। ये हुनने मैं शायद तुसु अटपटा जरूर लगू भूना लेकिन ये सच्चाई है शो तो ये सच्चाई है इस चिट्टे रे ये सच्चाई है इस सूखे नशे रे कि अगर तो है सूखे नशे री चपेट में चले आए ना और ये उम्र भी कोई 15-16 साल तो बाद किया सो लगी पेंदे इस सूखे नशे भी चपेट में अगर तो है चले आए ना तो वाकई में ये हाल बंदे देर ना लगने हैं। जहने में तस व्यक्ति रे मुँह अथो ये गल होनी तब मुझो इंटरनली इतना लो फील करूँ करता थो इंटरनली हूँ इतना टूटी गो मिलो यार इस नशे रे पिछो अक माँ अपने पुत्रों के असो कस प्रकार हो गए। अभी सोचा कि नरेगा माँ दिहाड़ी लाओ कर दे बुल्ले चलो कम कोई भी आऊँ हमेशा बनोगे कम कोई भी ऐसा छोटा बड़ा ना हों लेकिन चलो मेहनत सो करूँ कर दी लेकिन मेहनत सिर्फ और सिर्फ चिट्टा पूरा करने वास्ते। हाँ ये सच्चाई है पालमपुर रे अक ग्रां रे सच्चाई है शो तो कि सो सेरी उम्र आई थिंक 21 साल सेरी उम्र बुने दबू रे और सो अपनी नस्सा कट्टी लू करदा जने तसी चिट्टा ना मोड़ो करदा तिनी अपने घरा मंच के अपने खिड़की दरवाजे के सोना छड़े हैं जने तसी नशा ना मोड़ो करदा हा। तो नशा निवारण केंद्र में किया सो तसी पाने री प्लान चल रहा हा कि किस प्रकार होगी तसी कि सो नशा निवारण केंद्र तक पाएगा अच्छा ताकि सेवा सुधार की सो बुझे अच्छा। इवन कि त्यारे पविजा ने मुंजो दसो कि पहले भी 2-3 महीने किया सो नशा निवारण केंद्र में रह कर रहा तो थोड़ा ठीक हुआ तो लेकिन फिर ही किया सो वैसी संगति में पेगा और फिर इस प्रकार हो गए बचगो। मुझे ये लगता है कि जो भी यूथ इस समय मुझे हूँ करता है ये गल बहुत अहम है बहुत मायने रख दिया कि तो है कम से कम इस प्रकार तो बना मेहनत कराओ ना बल्दा कि हाँ गवर्नमेंट जॉब ही ले आया या फिर कुछ ही करा आऊँ बल्लो कि सिर्फ मेहनत करा मेहनत जो भी है जड़ी भी है सच्चे दिला हो कि लगा मेहनत करा तुम्हें पेरेंट जो कोई उंगली चुकी करिए ना बलि दिया कि यार तेरा दबू मतलब इस प्रकार रहा या तेरे को किया सो इस प्रकार रहा है ना। बगैर फादर साहब रे अकी मोरा माँ कस प्रकार हो गए कि सो अपने बच्चे जो पाल दे हा कस प्रकार हो गए सारी क्या इन सो ख्वाहिशा रिंदी हिन सारी उम्मीदा रिंदी हिन इमन जो थो बेहतर शायद कोई ना जाने सकता हा। लेकिन एटलीस्ट तो है कुछ भी करा लेकिन इतना ज़रूर करा कि तहा मौज हो किया सो सुकून रे रोटी तो तहा खाने मिलेगा अच्छा सोना चांदी की तहा तो है बड़बड़ी मतलब थैली दी थैली रखी दिया तो है पैसे रे या बड़बड़ तहा हार सिंगार किया सो दे दिया है बड़बड़ सो सोना चांदी री कोई भूखे ना बंदे माँ सो सिर्फ ये चाहते कि मेरा बच्चा गया सो खरा निकला मेहनत करा खरा निकला और इस प्रकार हो गया क्या सो तहा अंदर मतलब सो माँ सोचा किस प्रकार होगी पूरा दिन दिहाड़ी लेंदे बने होते थे बाद अपने तस बच्चे जो हेरते बुने जो नशे का इंतजार करो करता है। यूथों मेरे आखी गुजारिश है कि इस प्रकार हो गया क्या सो मत अपनी लाइफ जो बर्बाद करा मत अपने माँ बुढ़े भी जिंदगी जो किया सो बर्बाद करा खासकर मोरी जिंदगी जो किया सो मत बर्बाद करा। तह कस उम्मीद हो गई चिंगारी जलौरे बुने हाँ कि मेरा बच्चा किया सो पढ़े लिखे करे या मेरा बच्चा किया सो कमाए बताए करे मुझो सुखरी दुई रोटी किया सो दिल्ला चैनरी दुई रोटी किया सो दिल्ला दो टाइम रोटी किया सो दिल्ला। लेकिन अज सोई माँ इतनी फ्रस्ट्रेट इतनी परेशान आ कि जहने मैं तिंगा होगी गाल करूँ तो मेरी हक रही है कि सो पानी चले आशो तो सो मेरी यूथ सो गया की गुजारिश है कि सुखे नशे थो किया सो जरूर दूर रहा जरूर दूर रहा माँ बाप जो जरूर खुश रखा। इन शब्द था हूँ सचिन कपूर ले लेनो अब इजाजत हंसते रहे मुस्कुरंदे रहे पर्यावरण जो सुरक्षित रखा साफ रखा सुथरा रखा और सुखे नशे थों किया सो दूर रहे शो तो नमस्ते धर्मशाला।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत का है। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सब ठीक है
2: डॉक्टर साहब?
1: हाँ बोलिए।
2: बताइए ना, कृष्णा जी ही होंगे ना?
3: मैंने तो बहू से पहले ही कह दिया था, चाहे कुछ भी हो जाए खानदान की नाक नहीं कटनी चाहिए।
2: लड़की है तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना।
1: देखिए आप,
2: पेमेंट की चिंता मत करिए।
4: ऐसी ही सोच से शुरुआत होती है कन्या भ्रूण हत्या की। ये सोच भी हत्या के समान है। अपराधी कड़ी से कड़ी सजा के हकदार हैं।
5: बेटे की आस में बेटियों को बलि मत चढ़ाना। भारत की आन बान शान में हमारी बेटियों का योगदान

0: सबका साथ ढूंढना छोड़ो मित्र, खुद का साथ काफी है। सच्चा रिश्ता वही है जहां शब्द कम और समझ ज्यादा हो। जो तुम्हें अधूरा छोड़ दे, समझो वो तुम्हारा था ही नहीं। भीड़ को खुश करना छोड़ो मित्र, खुद को पहचानना सीखो। जहां कद्र ना हो वहां मौन रहना ही सबसे बेहतर है। अपनी सादगी मत खोना, चमक तो कांच के टुकड़ों में भी होती है। मुस्कुराकर विदा करो उन्हें जो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं।
1: गर्भवती महिला को पीले नारंगी फल और सब्जी, हरी सब्जी, दूध और दही खिलाओ, पर कभी कभी ये सब लाना भूल गए तो
2: अरे भूल गए भूल गए भूल गए अरे भूल गए भूल गए भूल गए।
1: चुप यार। पति को, परिवार को शनिवार या रविवार को खत्म होने से एक दो दिन पहले याद दिलाओ।
2: तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ, तरह तरह का खाना खाओ, हर तरह का खाना खाओ।
1: गर्भवती होने की वजह से कभी कभी अगर खाने का मन ना हो तो
2: पूरा खाना एक साथ नहीं,
1: थोड़ा थोड़ा करके कई बार

0: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
1: ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर? चलो बैठो बैठो।
2: बढ़िया।
1: फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है, पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम?
3: कितना टाइम?
1: अरे पूरे 2 घंटे।
3: अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहा है बुरबक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है।
4: खांसी? ये तो 2 हफ्तों से हो रही है।
3: 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते, ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ।
1: डॉक्टर?
4: डॉक्टर?
1: अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए।
3: और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
3: हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है
4: वो किसी को भी हो सकता है।
3: और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल।
1: चलो।
3: 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: अरे ले आओ यार नाश्ता।
0: पहले ये झाड़ू लगा लूं कि नाश्ता करूं? एक इंसान क्या क्या करेगा।
5: कम से कम टॉवल तो सुखा देती।
0: अरे यार नाश्ता करके सुखा दूंगी।
5: वो देख तेरी भाभी बेचारी कब से लगी हुई है, जाके भाभी की हेल्प करा दे सफाई में।
0: भाई मैं अभी ना गई हूँ, मैं नहीं जा रही।
5: अबे यार हेल्प करने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम फॉर्मेलिटी के लिए पूछ तो सकती है।
0: भाभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है क्या?
6: हाँ आप झाड़ू लगा लो, मैं ना नाश्ता बना लेती हूँ।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

चांद को देखकर यूं ही मुस्कुरा लिया करो, जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ा ठहर लिया करो। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ट्यून इन हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आप सभी अपनी घड़ी पर अपना आज का अभी का समय मिला सकते हैं। 6:05 होने को आए हैं और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जो है वो अब शुरू हो गया है। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आज लेकर आई है आपके समक्ष आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को जिन्होंने भी रेडियो को ऑन कर लिया है, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ जुड़ गए हैं उन्हें भी, और फेसबुक पेज पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन सबको भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे और दिन जो है आपका बहुत अच्छे से जो है वो निकल रहा होगा या निकल चुका होगा, और शाम जो है वो आ गई है आपकी रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और आज के कार्यक्रम में श्रोताओं, रोज़ाना की तरह आपके साथ होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां भी आप तक पहुंचाई जाएंगी, और आज प्यारे प्यारे गीत जो है वो भी आपको सुनवाए जाएंगे। तो श्रोताओं, जितने भी श्रोता कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं उनका तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम में, और जो श्रोता नहीं जुड़े हैं उनका हम इंतज़ार करेंगे इस कार्यक्रम में। तो जल्दी से कार्यक्रम में जुड़िए और रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़िए ताकि हम आपके साथ कर सकें बातचीत और आप तक पहुंचा सकें जानकारियां। साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि आज कार्यक्रम में ख़ास तौर पर चांद पर आधारित गीत आप लोग सुनेंगे, तो सुनने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम शुरू हो गया है आपका अपना गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसका समय रहता है अब यानी कि 6 से लेकर 8 तक का। तो श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला ज़रूर हम शुरू करेंगे, लेकिन फ़िलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। तो चलते हैं, सुनते हैं नया दौर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। लीजिए सुनिए इस गीत को आप सभी आपके अपने रेडियो सेट पर।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी इस समय ट्यून हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है इस प्यारे से गीत के साथ। गीतों की बात अगर करें श्रोताओं, तो बहुत सारे गीत आपको कार्यक्रम में रोज़ाना सुनने को मिलते हैं और आज भी मिलेंगे। और आज खास ये रहेगा कि आज सभी गाने ज़्यादातर चाँद पर आधारित हैं, और श्रोताओं चांद की बात इस गीत में भी हुई है, और चांद को देखने के बहाने हम कई बार किसी और को देखने के लिए भी छत पर आते हैं। और श्रोताओं आप में से भी कई लोग अभी भी आते होंगे, क्योंकि भाई चांद ही एक ऐसी चीज़ है जिसको देखने के लिए, निहारने के लिए हमें छत पर जाना पड़ता है, और ये नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। तो श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं, और 88.4 मेगाहर्ट्ज पर हमीरपुर के धतवाल की आवाज़ पर भी हमें आप सुन सकते हैं और इस समय सुन भी रहे होंगे। तो हमीरपुर के जितने भी श्रोता कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उन सभी को भी

आत्मा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ हमारे हमीरपुर के आसपास के क्षेत्र के जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो सभी ठीक ठाक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, थोड़ी सी बात हम पहले आज ये बात करेंगे कि शाम का जो समय है ये कहीं ना कहीं भागा दौड़ी वाला रहता है, और आज खास करके मंडे है और हम सभी 5 जैसे ही बजते हैं हमें छुट्टी हो जाती है अपने अपने कार्यस्थल से, और हमें जल्दी होती है कि हम कब घर पहुँचें, कब हम लोग अपने परिवार में पहुँचें। और ऐसे में क्या होता है श्रोताओं कि हम लोग अपनी अपनी गाड़ी में, अपनी अपनी स्कूटी में, अपनी अपनी बाइक पर सवार होते हैं। खैर, घर पहुंचने की सबको जल्दी होती है श्रोताओं, और ऐसे में हम यही कहेंगे कि हम भी देखते हैं कि इस भाग दौड़ में हर किसी को जल्दी लगी है कि हम इससे आगे निकल जाएं, कोई हमसे आगे ना निकले। तो कहते हैं जो किसी और को रास्ता देता है उसे रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं, और अगर किसी को आप मंजिल तक पहुंचाने में उसकी सहायता करते हैं तो आपको भी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो श्रोताओं, आप ड्राइव कर रहे होंगे अगर, तो हम आपसे यही कहेंगे कि ड्राइव धीरे करें, आपको कोई नुकसान ना हो, और साथ ही रोड पर चलने वाले लोगों को या फिर पशुओं को भी कोई नुकसान ना हो। कार्यक्रम में आज खास हम बात करेंगे श्रोताओं चांद दिवस की, और कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में भी आज आपने इसी विषय पर बहुत ही विस्तार के साथ सुना होगा। खैर, इस समय हम विस्तार से ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे होते हैं जो सुबह कार्यक्रम नहीं सुन पाए होते हैं, वो शाम के समय हमारे साथ जुड़ते हैं। तो श्रोताओं, बातों को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से आपको चांद की सैर करवाएंगे इस गीत के जरिए। तो चलिए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में एक और प्यारा सा तराना।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। चांद को क्या मालूम, देखता है उसे चकोर। श्रोताओं, चकोर की बात तो अलग है, लेकिन चांद जो है उसे देखे बिना कोई भी नहीं रहता। और चांद की खूबसूरती जो है वो हम सभी देख सकते हैं, और चांद को देखने के लिए हम लोग कई बार छत पर जाते हैं और चांद को निहारते हैं। सचमुच चांद है ही इतना खूबसूरत कि चांद पर इतने सारे गीत गीतकारों ने भी बना डाले हैं, और कहीं ना कहीं किसी की सुंदरता की तुलना के लिए भी चांद का इस्तेमाल किया जाता है। तो श्रोताओं, आज इस खूबसूरत शाम में हम बात करेंगे उस साथी की जो हर रात बिना कुछ कहे हमारी दुनिया को रोशन करता है, और वो है चांद। बिल्कुल, आज 20 जुलाई का दिन है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस हम सभी मनाते हैं। यही वो ऐतिहासिक दिन है जब वर्ष 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ये दिन हमें विज्ञान, जिज्ञासा और मानव साहस की याद भी दिलाता है। श्रोताओं, चांद सिर्फ आकाश का एक खूबसूरत ग्रह नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, साहित्य और संगीत का भी अहम हिस्सा रहा है। कभी किसी की मुस्कान की तुलना चांद से की गई, तो कभी प्रेमियों ने अपनी भावनाएं चांद के सहारे बयां की। बच्चों की लोरियों से लेकर कवियों की कविताओं तक चांद हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। साथी श्रोताओं, हमारे भारत ने भी चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के साथ दुनिया को दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये उपलब्धि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है और युवाओं के लिए प्रेरणा भी। तो श्रोताओं, आज की शाम हम यही एक संकल्प लेंगे कि हम अपने भीतर जिज्ञासा, सीखने की इच्छा और बड़े सपने देखने का साहस हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे से सपने से ही होती है। और अब इस खूबसूरत एहसास को और भी खास बनाते हैं चांद पर आधारित इस प्यारे से गीत को सुनकर। तो चलिए श्रोताओं, तैयार हो जाइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए, जिसे हम लेकर आए हैं दामिनी फिल्म से। आवाजें दी हैं इस गीत को कुमार शानू और अलका याग्निक ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जो चांद पर आधारित था। श्रोताओं, चांद पर लिखे गए गीत कभी पुराने नहीं पड़ते, शायद इसलिए क्योंकि चांद हर पीढ़ी के लिए उम्मीद, सुकून और खूबसूरती का प्रतीक है। बिल्कुल श्रोताओं, और आज की शाम आपको चांद पर आधारित गीत ही सुनाए जाएंगे, तो आप सभी को भी चांद पर आधारित गीत अगर पसंद हो तो सुनिए ज़रूर। और आप सभी को अब लेकर चलना है जानकारी की और, क्योंकि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला श्रोताओं मनोरंजन के साथ साथ आप तक जानकारियां भी पहुंचाने का काम करता है, तो चलते हैं जानकारी की ओर। श्रोताओं, जिला दंडाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने जयसिंहपुर सिविल न्यायालय परिसर जयसिंहपुर के निकट स्थित खुले मैदान को तत्काल प्रभाव से टैक्सियों एवं अन्य वाहनों के पार्किंग स्थल के रूप में अधिसूचित किया है। उन्होंने कहा है कि इस पार्किंग स्थल के प्रबंधन, संचालन, रखरखाव एवं समुचित व्यवस्था की जिम्मेदारी उपमंडलाधिकारी जयसिंहपुर की होगी। पुलिस विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से पार्किंग स्थल का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और श्रोताओं, जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और फिर से आपको सुनवाएंगे एक और प्यारा सा चांद पर, चांदनी पर आधारित गीत। तो जुड़िए फटाफट रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और लो जो श्रोता जुड़े हुए हैं वो लीजिए, सुनिए इस प्यारे से गीत को, दिले नादां। इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सुनने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और कार्यक्रम में और भी गीत आप तक पहुंचाने हैं श्रोताओं, जानकारियां भी आप तक पहुंचानी हैं, और साथ ही श्रोताओं आपको पता है कि हम बीच में एक ब्रेक भी लेते हैं, तो अब वो समय हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक हम कार्यक्रम में लेंगे और उस ब्रेक के बाद फिर से कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो आप सभी इसी तरह से जिस तरह से अभी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और हम लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो कुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और जैसा कि हमारे नियमित श्रोता जानते हैं कि कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो श्रोताओं 8 बजे तक इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ेंगे आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और आज हम खास गीत आपके लिए लेकर आए हैं श्रोताओं, और बातों का ये सिलसिला जो है कार्यक्रम में चलता है, और बहुत सारे श्रोता हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं अपने घर के काम करने के साथ साथ वो हमारे बातें भी सुनते हैं और गीतों को भी इंजॉय करते हैं। तो श्रोताओं बरसात जो है वो आ गई है और झमाझम बारिश जो है वो आजकल लगातार हो रही है। तो श्रोताओं जब ये मौसम आता है तो अगर हमें थोड़ा सा समय घर पर फ्री मिलता है, बच्चे हों या बड़े हों बुज़ुर्ग हों, तो उनकी थोड़ी सी डिमांड बढ़ जाती है कि अब सर्दियां हैं या बरसात आ गई है, थोड़े से पकोड़े बना लेते हैं। आजकल श्रोताओं बहुत कुछ घर पर बनता है और आजकल खाने का भी मन करता है। तो श्रोताओं अपना मन जो है वो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए, और जिस चीज़ का मन करे उसे बनाकर खा लेना चाहिए। और श्रोताओं घर की किचन से आने वाली खुशबू जो है वो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है, और जो कहते हैं कि हमें ये नहीं खाना, जब वो चीज़ तैयार हो जाती है तो वो भी आके बनकर बैठ जाते हैं। ऐसा आप सभी के साथ भी होता होगा श्रोताओं, और कहते हैं ना कि किसी के दिल तक अगर आपने पहुंचना है तो पहले आप उसे उसके पेट तक आपको पहुंचना पड़ेगा। स्वादिष्ट खाना जो है वो हर किसी को आपका दीवाना बना सकता है। खास करके बच्चों की बात करेंगे तो बच्चों की डिमांड्स बहुत होती हैं, लेकिन हाँ बच्चों की आजकल जो डिमांड्स है वो ज़्यादातर फास्ट फूड की रहती है, मैगी बना दो या कुछ और बना दो। लेकिन जब खाने की बात आती है कुछ ऐसा पकवान जो हम बनाते हैं खाते हैं, साग बना लो या आजकल पतरोड़े भी लोग बनाते हैं, तो बच्चे थोड़ा सा नाक उठाते हैं। तब हम उनसे यही कहते हैं कि एक बार खा कर देखिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खाइए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। कई बच्चे सिर्फ शक्ल देखकर ही पीछे हट जाते हैं, तो बच्चों से हम यही कहेंगे कि शक्ल पर ना जाइए, स्वाद थोड़ा सा चख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फिर से कहेंगे कि हमें और दीजिए। तो श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ आप जुड़े हुए हैं, और खाने पीने की बात हमने कर ली है, और अब इसके बाद जानकारियों की ओर भी बढ़ना है। तो पहले चलते हैं एक खूबसूरत से गीत की ओर, और आपको सुनवाते हैं कहो ना प्यार है फिल्म का प्यारा सा गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम को सुनते सुनते आप अपने काम भी करते हैं और साथ ही आप इन गीतों को भी इंजॉय करते हैं। साथ ही श्रोताओं, गीत जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू भी जाते हैं। कई बार हम काम करते करते इन गीतों को गुनगुनाते भी हैं, और गुनगुनाना भी चाहिए। कहते हैं कि गीतों के साथ जुड़ने से कहीं ना कहीं हमारा जो तनाव है वो कम होता है, और हम अगर किसी बात से परेशान हैं तो थोड़ी देर के लिए उन बातों से बाहर निकलकर आ सकते हैं। तो गीतों को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए और जुड़िए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, जिस पर आपको रोज़ाना 24 घंटे बहुत प्यारे प्यारे गीत सुनने को मिलते रहते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में थोड़ी सी बात हम करेंगे कि आजकल क्या बहुत सारे समय से पहले से ही हम आपके साथ ऐसी बातें, ऐसी खबरें जो हैं वो शेयर करते रहते हैं कि ठगी जो है वो बहुत जगह होती है, फ़ोन पर होती है, सोशल मीडिया पर होती है, और कई घरों पर भी होती है। और आए दिन इन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं इसलिए कि आप लोग सतर्क रहें। ये खबर किसी की हो सकती है और कल को कहीं और भी हो सकती है, इसके लिए हमें उन खबरों से थोड़ा सा सतर्क होना चाहिए। चोरी की एक खबर जो है वो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने सोशल मीडिया पर सुनी थी, हमारे यहाँ की तो नहीं है, जीरकपुर में एक घर पर चोरी हुई है, और चोरी भी ऐसी कि जहाँ से घर के नलके, पंखे, स्विच बोर्ड, स्विच और न जाने छोटी छोटी चीज़ें, जो भी चीज़ें चोर के हाथ में लगी वो चोर लेकर निकल गए। तो श्रोताओं, हम लोग कई बार लापरवाही करते हैं, कई कैश भी हम घर पर रखते हैं, गहने जो हैं वो भी हम घर पर रखते हैं, हमें लगता है हमारे घर से सेफ कोई जगह नहीं है। लेकिन आजकल के दिनों में कई बार हम लोग घर पर नहीं भी होते हैं, या हम होते भी हैं तो चोर इतने शातिर होते हैं कि वो हमारे घर रहते रहते भी चोरी कर जाते हैं, और इतनी धन दौलत या जो भी हमने बनाया होता है वो कहीं ना कहीं मेहनत करके, कुछ पैसे जोड़ कर हमने वो चीज़ बनाई होती है, और जब चोरी होती है तो हमें बुरा लगता है। खैर, जिनके घर चोरी होती है उनका तो हम कह सकते हैं कि उन्हें बहुत बुरा लगता होगा, लेकिन हम जब ऐसी खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है, और सोचने पर हम मजबूर हो जाते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है।

कितनी भी लोगों में क्या मतलब चोरी की एक ललक लगी है, या नशे कह लीजिए श्रोताओं, या बेरोज़गारी कह लीजिए, या निकम्मापन भी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो काम करना नहीं चाहते, कोई नौकरी करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस कहीं पर भी लूटपाट करके हम लोग पैसे कमा लें या पैसे लूट लें और अपना घर चला लें। तो ऐसी सोच जो है वो बदलनी चाहिए। खैर, जो लोग ऐसा करते हैं उनकी सोच को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम सतर्क ज़रूर हो सकते हैं। तो ऐसी खबरों को जब भी आप सुनते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। पैसे, धन, दौलत या जो भी आपकी जमा पूंजी है या गहने हैं, उन्हें अपने घर पर रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और कार्यक्रम में अब बातों को यहीं पर रोकेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, अगर हम रुक गए तो वहीं रह जाएंगे। चलते हैं श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम में, मिस्टर आशिक फिल्म से। इस गीत को आवाज़ से सजाया है कुमार शानू ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं आपकी आरजे दोस्त सुषमा के साथ। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, जिसमें कि हम आपके साथ करते हैं बातचीत और जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं, साथ ही आपको सुनवाते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो श्रोताओं, थोड़ी सी बात करेंगे बरसात को लेकर। बरसात जो है वो अब शुरू हो गई है, बहुत बारिश जो है वो आजकल हम देख रहे हैं, हो रही है बारिश। और बारिश में हम यही कहेंगे कि कहीं बाहर जाने से पहले सोच लीजिए और मौसम के बारे में जानकारी ले लीजिए, क्योंकि एक तो बरसात की आजकल बच्चों को छुट्टियां पड़ी हैं और हम लोग भी प्लान कर लेते हैं कहीं ना कहीं घूम फिर आने का, क्योंकि हर कोई सोचता है कि थोड़ा सा समय मिला है तो कहीं ना कहीं निकला जाए। लेकिन ये समय जो है हमें कई बार परेशान भी कर सकता है, कहीं हम निकल जाएं और बहुत तेज़ बारिश हो, रास्ते बंद हो जाएं या फिर लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि मौसम विभाग के अनुसार जो भी निर्देश हमें दिए जाते हैं उनका हमें पालन करना चाहिए और अवॉइड कीजिए कहीं बाहर जाने का जब तक कि मौसम ख़राब है, आप अपने घर में ही सुरक्षित रहिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब कुछ ही समय बाद यानी कि ठीक 7 बजे समाचार जो है वो आपको सुनवाए जाएंगे। तो चलते हैं, सुन लेते हैं तब तक कार्यक्रम में और प्यारे से गीत। श्रोताओं, दूर की आवाज़ इस फिल्म का गीत अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: 91.2 मेगा हर्ट्स पर श्रोताओ, आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओ, कार्यक्रम में गीत आप तक पहुंचाए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको गीत ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। श्रोताओ, आज खास दिन यानी कि चंद्रमा दिवस पर हम बात कर रहे हैं, और जैसे कि आपको पहले भी कहा कि मॉर्निंग प्रोग्राम में भी आपने इस बारे में बहुत डिटेल में आज सुना होगा, लेकिन श्रोताओं कहते हैं कि बचपन में हम सब ने चांद को चंदा मामा ही तो कहा है, और आज भी हम अपने बच्चों को यही कहते हैं कि वो देखो चंदा मामा। तो श्रोताओं, चंदा मामा आज भी सबको उतने ही प्यारे हैं जितने उस समय हुआ करते थे। चांद को देखे बिना कोई नहीं रह पाता, और जब चांदनी रात होती है तो हम चांद की ओर नज़र कर ही देते हैं। क्या चांद हमें अपने आप अपनी ओर खींच लेता है, और ये नज़ारे श्रोताओं जब भी देखने को मिले ज़रूर देखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुकून हमें मिलता है, शांति हमें मिलती है और अच्छा भी हमें लगता है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, श्रोताओं इस समय आप सभी सुन रहे हैं, और कार्यक्रम में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं पहले समाचार, बाकी की बातें समाचारों की बात।
1: आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कर कई बार स्थगित किए जाने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले दिन में 11 बजे जब लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो हाल ही में दिवंगत हुए 6 पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सदन ने कतर के फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को भी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी ने भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिड़ला ने विपक्ष से सदन के संचालन में सहयोग करने और मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करते हुए कहा कि सदन में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने अध्यक्ष की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित किए जाने से पहले कई बार स्थगित की गई। दोपहर 2:30 बजे पांचवीं बार स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने निर्धारित कार्यसूची को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी की और अपना विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। वीडियो संदेश में दिल्ली पुलिस के अपर आयुक्त और जनसंपर्क अधिकारी राजीव रंजन ने जनता को किसी भी मंच के माध्यम से अफवाहों, गलत सूचनाओं पर विश्वास न करने और न ही उन्हें फैलाने की सलाह दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज किशिनौ में स्टेफान सेल मारी सीफेंट स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ये समारोह मोल्दोवा के राष्ट्रपति नायक को सम्मान देने के लिए आयोजित किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने आज भारत और मोल्दोवा के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ते क्षेत्रों के साथ काम करने की बड़ी संभावना है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किशिनौ में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा ऐतिहासिक है, क्योंकि किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की ये यात्रा पहली राजकीय यात्रा है। विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की 8वीं बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिन की वर्चुअल बैठक भारत के ब्रिक्स के व्यापक दृष्टिकोण, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण को आगे बढ़ाती है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक ब्रिक्स में आर्थिक विकास को समर्थन देने वाले स्थिर, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित ढांचे को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर करती है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के नव निर्वाचित नेता एंडी बर्नहम ने नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। किंग चार्ल्स तृतीय ने ग्रेटर मैनचेस्टर के 56 वर्षीय पूर्व मेयर को कीर स्टार्मर के इस्तीफे के बाद नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इससे पहले कीर स्टार्मर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपना अंतिम भाषण दिया और फिर औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए किंग चार्ल्स से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वे एंडी बर्नहम को सत्ता सौंप रहे हैं और वे उन्हें पूरा समर्थन देंगे। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राजौरी और पुंछ जिलों में बारिश की घटनाओं में मरने वालों के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 6-6 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बारिश की घटनाओं में हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस मुश्किल समय में लोगों के साथ है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को प्रभावित परिवारों की तत्काल राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, समाचारों के बाद और इस अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं, अब समाचारों के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत फिर से करेंगे एक प्यारे से गीत के साथ। सपने फिल्म का ये गीत हरिहरन और साधना सरगम की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, जिसमें कि चांद को धरती पर आने के लिए कहा जा रहा था कि चांद नीचे उतर आए और हम चांद के साथ बातें कर सके। श्रोताओं, चांद नीचे धरती पर आए ना आए, लेकिन चांद के साथ हम बातें कर सकते हैं। अपने मन की कोई बात अगर हम करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ चांद सुन सकता है और कोई भी नहीं। इसलिए आपके मन में भी अगर कोई बात हो तो कभी शाम के समय चांदनी रात में बैठें और चांद की ओर देखकर ज़रूर बात किया कर लीजिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब हम आगे बढ़ेंगे और एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ऑनलाइन शॉपिंग के इस आधुनिक दौर में अब हिमाचल के मंदिरों के प्रसाद को भी घर बैठे भक्तों तक सरलता से पहुंचाने की व्यवस्था शुरू हो रही है। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों भक्तों की आस्था के केंद्र उत्तरी भारत के दियोटसिद्ध स्थित प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बाबा बालकनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत की जा रही है। श्रोताओं, इसके तहत बाबा जी का रोट प्रसाद अब ऑनलाइन माध्यम से भी लोगों के घर तक पहुंच सकेगा। इंडिया पोस्ट के सहयोग से शुरू की जाने वाली ऑनलाइन प्रसाद वितरण सेवा का मंदिर न्यास ने प्रोसेस शुरू कर दिया है। इसके बाद इसका टेंडर होगा। बताया जा रहा है कि बाबा बालकनाथ मंदिर ट्रस्ट की कुछ वर्ष पहले जो वेबसाइट बनी थी, इसको अपडेट कर ऑनलाइन प्रसाद के लिए नया फीचर डाला गया है। इसमें 1100 रुपये का एक पैकेज तैयार किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु वेबसाइट के माध्यम से रोट पर पवित्र जल, अखंड धोने की विभूति, चांदी की सिंगी, धूप, सिंदूर, चरण पादुकाएं इत्यादि घर बैठे पा सकते हैं। श्रोताओं, जो श्रद्धालु किसी कारणवश दियोटसिद्ध नहीं पहुँच पाते, वे घर बैठे मंदिर का विशेष प्रसाद मंगवा सकेंगे। मंदिर ट्रस्ट इस योजना को इंडिया पोस्ट के माध्यम से लागू करेगा, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं तक भी बाबा का प्रसाद पहुंच सकेगा। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने। और इस जानकारी के बाद श्रोताओं अब आगे बढ़ेंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे एक और प्यारा सा गीत। लीजिए सुनिए अनाड़ी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, मुकेश चंद माथुर की आवाज़ों में।

चांद भी अपनी चांदनी पर इतराता होगा, चांद भी अपनी चांदनी पर इतराता होगा जब कोई उसे देखकर मुस्कुराता होगा। श्रोताओं, चांद को देखकर हमें अच्छा लगता है। और चांद से जुड़ी एक बात और कहेंगे श्रोताओं, जब लैंडलाइन फ़ोन का ज़माना था, मोबाइल फ़ोन नहीं आए थे और लैंडलाइन जो था वो हर घर में हुआ करता था, हम एक दूसरे से बात किया करते थे, उस समय वीडियो कॉल का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। और हो सकता है कि आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा कि आपने भी अपनी खिड़की से बाहर झांका होगा और कहा होगा कि चांद बहुत सुंदर आज निकला है, क्या आपको भी दिख रहा है? और दूसरी तरफ से आवाज़ आती होगी, हाँ चांद तो यहाँ भी बहुत अच्छा निकला हुआ है। तो दोनों तरफ से चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन जब चांद को देखते थे तो ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखा जा रहा है। तो श्रोताओं, ये भाव होते हैं। और कहते ना कि चांद एक ही है, उसे हर कोई देख पाता है। एक समय में हम चाहे एक दूसरे को ना देख पाते होते थे, उस समय जिस समय मोबाइल फ़ोन आजकल जो हमारे हाथों में है, जिसके ज़रिए हम वीडियो कॉल से एक दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन वो भी एक समय था जब वीडियो कॉल्स नहीं होती थी और लैंडलाइन पर बात हुआ करती थी, तो चांद को निहारा जाता था और बात की जाती थी। खैर, पुरानी बातें हैं, लेकिन बातों बातों में बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं वो निकल कर आ जाती हैं। और आज जिस श्रृंखला को हम लेकर चले हैं, गीतों की श्रृंखला को, चांद से जुड़ी हुई श्रृंखला आज हम लेकर आए हैं, तो श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये गीत ज़रूर पसंद आएगा। काला बाजार, इस फिल्म का गीत श्रोताओं अब आप सभी के रेडियो सेट पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ पर भेज रहे हैं।

बिल्कुल श्रोताओं, खोया खोया चांद और इन गीतों को सुनकर कहीं ना कहीं हम भी खो जाते हैं और इन गीतों में ही खो जाना कई बार अच्छा भी लगता है। श्रोताओं, कई बार ऐसे गीत हम सुनते हैं जिन्हें सुनकर मन करता है कि बार बार इन्हें सुना जाए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि गीतों को फिर बदल करके आपको सुनाया जाए और आपको पसंद भी आए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब इस गीत के बाद आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और आप तक पहुंचाएंगे एक और जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज यानी कि सोमवार को यहाँ हमीरपुर ज़िले के गलोड क्षेत्र के राजेश शर्मा ने भेंट की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हाल ही में अपनी जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आदित्य शर्मा की असामयिक जो मृत्यु का मामला है केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाए, क्योंकि अब तक इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार मजबूती के साथ परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि वह इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएंगे ताकि परिवार को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। तो श्रोताओं, इस जानकारी इस खबर के बाद कार्यक्रम में फिर से लौटेंगे और आपको लिए चलेंगे फिर से कार्यक्रम में एक प्यारे से गीत की और अब्दुल्ला इस फिल्म का गीत अब श्रोताओं आप सभी सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कार्यक्रम में। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको हम सुनवाते हैं प्रेरणादायक कहानी और कहानी सुनने के लिए आप सभी ज़रूर तैयार बैठे होंगे श्रोताओं। तो जो लोग नहीं हैं रेडियो सेट के पास वो भी जल्दी से आ जाइए क्योंकि प्रेरणादायक कहानी अब आपको हम सुनवाएंगे, लेकिन पहले यहाँ रुकेंगे एक प्यारे से गीत के लिए। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद आपको सुनवाई जाएगी कहानी। तो श्रोताओं दिल एक मंदिर इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। इस गीत के बाद अब हम चलेंगे और आपको सुनवाएंगे प्रेरणादायक कहानी। श्रोताओं, ये कहानियाँ सुनना सबको अच्छा लगता है, छोटे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, और कहानियाँ हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। तो श्रोताओं, आज की जो कहानी है वो एक बूढ़ी अम्मा की है जिनकी आदत थी, कहीं भी जाती थी तो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तोल भाव करना उनकी आदत थी। उनके घर के साथ ही एक सब्ज़ी की दुकान थी और उस सब्ज़ी की दुकान पर जब भी वो जाती थी तो वो बहुत तोल भाव करती थी कि ये इतने का है, इसे कम करो, इतना नहीं इतना है। तो दुकानदार जो था वो भी परेशान हो जाता था। कई बार होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है बहुत बोलने की और उन्हें देखकर हम लोग भी थोड़ा सा इग्नोर हो जाते हैं कि फिर से आ गए दिमाग खाने। तो उन अम्मा जी को देखकर वो सब्ज़ी वाला भी ऐसा ही करता था। एक दिन सुबह सुबह ही उस सब्ज़ी वाले ने अपनी दुकान खोली और वो अम्मा उसकी दुकान की ओर बढ़ी जा रही थी और दुकानदार ने देख लिया और कहा कि सुबह सुबह अम्मा बहुत दिमाग खाने वाली है। और जब अम्मा उनके पास आई तो अम्मा ने कहा कि ये लो तुम्हारे 5 रुपये। तो अब दुकानदार एकदम हैरान हो गया कि आज क्या हो गया, सुबह आते ही अम्मा 5 रुपये वापस लुटा रही है। तो अम्मा ने कहा ये 5 रुपये तुमने कल मेरी सब्ज़ी के जो थे वो कम लिए थे तो वो तुम्हें लुटाने आई थी। तब वो दुकानदार कहता है कि 5 रुपये के लिए तुम मेरे पास सुबह सुबह आ गई? तो कहता कि अम्मा तुम रख लो। कहते नहीं, जो मेरा है वो मैं रखूँगी और जहाँ मुझे मोल भाव करना है मैं करूँगी, लेकिन तुम्हारे 5 रुपये मैं नहीं रखूँगी। वो 5 रुपये दे के अम्मा चलेगी। तब उस दुकानदार ने सोचा ये 5 रुपये के लिए अम्मा जो है वो सुबह सुबह आ गई, लेकिन मैं जिसे सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आता हूँ उसके 300-400 रुपये मुझे देने को पड़े हैं, जो कि वो मंडी वाला भूल गया है। और उसे भी थोड़ा सा गिल्टी फील हुई कि मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो 300-400 रुपया जो भी है उसे दे देना चाहिए। अगले दिन वो जाता है मंडी सब्ज़ी लेने और उस मंडी वाले को 400 रुपये जो उसका बैलेंस होता है वो दे देता है। तो वो मंडी वाला भी कहता है कि छोड़ो अब मैं तो भूल गया। तो वो कहता है कि तुम भूल गए लेकिन मैं नहीं भूला और आपने 400 रुपये ये रख लो। उसके बाद उसका भी दिल बदलता है और वो सोचता है कि 400 रुपये के लिए इंसान अगर मतलब कर्जा नहीं रखता तो मैंने तो किसी अपने दोस्त से 1 लाख रुपए कभी मांगे थे और अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए, और उसने मुझे दिए भी थे और जिसके वजह से मैं बहुत लाखों रुपया कमा बैठा हूँ, लेकिन वो दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है और मैं भी चुप रहा कि अब उसके घर में किसी को पता तो है नहीं। तो उसके मन में भी आया कि नहीं यार, गलत नहीं करना है। और वो वापस उसके घर जाता है और उनके बच्चों को कहता है कि ये 1 लाख रुपया मैंने तुम्हारे पापा से किसी समय में लिया था, वो तुम्हें लौटाने आया हूँ। तो श्रोताओं, वो जो 1 लाख रुपये जहाँ देने गया वो उसी अम्मा का घर था जो अम्मा 5 रुपये सब्जी वाले को लौटाने आई थी। तो सारा खेल जो है वो श्रोताओं नियत का है, जो आपका है वो आपके पास रहे और जो किसी और का है वो उस तक पहुँचना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कितना कहाँ से मिलेगा इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। इसलिए श्रोताओं, ऐसी कहानियों को सुनकर हमें कहीं ना कहीं जागृति आती है और सोच में हम भी पड़ जाते हैं कि हमें भी किसी का हक जो है वो नहीं मारना चाहिए और किसी का 1 रुपया भी हो वो भी लौटा देना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई होगी, इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं लव मैरिज फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। श्रोताओं और कुछ ही समय बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: वो क्या चीज थी?

0: चीज थी मिला के नजर मिला दी
1: कि हमने नजर झुका दी।
2: अरे हो।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पद भरने को दी मंजूरी। आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की 2 नई किस्मों को केंद्र सरकार ने खेती के लिए किया अधिसूचित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से प्रदेश में बना अराजकता का माहौल। प्रदेश सरकार के आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों की भाजपा ने की आलोचना। बेरोजगारों के हितों के खिलाफ बताया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में 5 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट। 4 जिलों में कल भी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पद भरने को मंजूरी दी है। ये निर्णय आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। ये पद शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बजट घोषणाओं के अनुसार आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ाने को भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पीजी डॉक्टरों का स्टाइपेंड भी 50,000 से 65,000 रुपए तक बढ़ाया गया है।
4: हमारे जो नंबरदार हैं, उनका मानदेय जो है बढ़ाया गया है, वो 500 रुपए जो है। इसी तरह से जो आशा वर्कर्स है, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो कार्यरत है और वो हजारों की तादाद में है, उनका मानदेय भी जो है वो 1,000 रुपए जो है बढ़ाया गया है। आज सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जो नौजवान है, बेरोजगार नौजवान है, जो उम्मीद रखता है कि हमारे को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां मिलेंगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आज बहुत सारे प्रपोजल्स थे जिसमें कुछ खाली पोस्टों को भरने के लिए स्वीकृति कैबिनेट ने प्रदान की है। कुछ नई पोस्टें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है। लगभग कोई 7,500 के करीब पोस्टें जो है आज कैबिनेट ने जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में स्वीकृत की है।
3: मंत्रिमंडल ने हमीरपुर में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक अस्पताल बनाने को भी स्वीकृति दी है। इसके अलावा IGMC शिमला में रेडियोथेरेपी की 30 नई सीटें शुरू की जाएंगी। बैठक में लिए गए एक अन्य निर्णय के अनुसार प्रदेश में मेरिट आधार पर CBSE स्कूलों में भर्ती की जाएगी। मंत्रिमंडल ने मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी ग्रेड के सेब खरीद को भी मंजूरी दी है। हालांकि समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने आलू की 2 नई किस्मों कुफरी अभेद्य और कुफरी रूबी को खेती के लिए अधिसूचित कर दिया है। ये दोनों किस्में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित की गई हैं। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने बताया कि ये अधिसूचना हिमाचल के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि आलू राज्य की प्रमुख नकदी फसलों में से एक है। उन्होंने कहा कि इससे देश की गुणवत्ता युक्त बीज प्रणाली को मजबूती मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता भी कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। एक बयान में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ना तो अपने मंत्रियों और विधायकों की बात सुन रहे हैं और ना ही अधिकारियों द्वारा मंत्रियों की बात को सुना जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस कार्यप्रणाली की वजह से कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने सक्रिय राजनीति से मुंह मोड़ लिया है। कांगड़ा जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचित होने पर उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार की करारी राजनीतिक हार है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपनी भाषा पर संयम रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने देश की एकता व अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी है और इन नेताओं की याद में उच्च संस्थाओं के नामकरण का निर्णय गलत नहीं है। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा के पास कांग्रेस सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने प्रदेश सरकार द्वारा आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों को बेरोजगार युवाओं के हितों के खिलाफ बताया है। कुल्लू से जारी एक बयान में पार्टी प्रवक्ता अखिलेश कपूर ने कहा कि नए नियमों के तहत वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विभाग आउटसोर्स सेवाएं नहीं ले सकेगा। इसके अलावा आउटसोर्स व्यवस्था को केवल अति आवश्यक परिस्थितियों तक सीमित कर दिया गया है। भाजपा ने कहा कि इससे उन हजारों युवाओं के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे जो आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से रोजगार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित सीमा चौधरी और उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु कंवर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। चुनाव की प्रक्रिया आज धर्मशाला में पूरी की गई। चुनाव प्रभारी व विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जीते हैं, जो संगठन की एकजुटता व जनता के विश्वास का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पंचायत व जिला परिषद चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की राजनीतिक दिशा स्पष्ट कर दी है।
5: मुख्यमंत्री जी, आपका जो ये व्यवस्था परिवर्तन है उसका नमूना आप पूरे हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। युवा हताश है, महिलाएं दुखी हैं, किसान चिंतित है। बिजली मीटर पर 300 यूनिट मुफ्त सिर्फ और सिर्फ काट की हांडी बन गई है। बिजली के मीटर पर अगर जब बिल आता है तो सेस जो है वो हिमाचल प्रदेश के 28 लाख उपभोक्ताओं के जेब में डाका ढाला जा रहा है, यानी समाज पूरी तरह से दुखी है, उसी का ये परिणाम है।
3: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में हाल ही में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा के परिवार ने मुख्यमंत्री से न्याय की मांग की है। आदित्य शर्मा के पिता राजेश शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट कर इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने शोकग्रस्त परिवार के प्रति संवेदनाएं जताते हुए परिवार को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर जिला के चहुंमुखी विकास के लिए कई बड़ी परियोजनाएं मंजूर की हैं। हमीरपुर जिले की उखरी पंचायत के विभिन्न स्थानों पर आज जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों के राज्य स्तरीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। सुनील शर्मा ने कहा कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों को भी हमीरपुर शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे जिले के विकास को बल मिलेगा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुनील शर्मा के समक्ष पेयजल और विद्युत आपूर्ति से जुड़ी कई समस्याएं रखी। उन्होंने ट्रांसफार्मर स्थापित करने, क्षेत्र के मोक्षधाम की सड़क के निर्माण

0: गया है। रेड अलर्ट को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि पौंग बांध का जलस्तर पिछले कल 1322 फुट दर्ज किया गया, जो अभी सुरक्षित स्तर पर है। उन्होंने कहा कि बांध की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध तरीके से पानी छोड़ा जाएगा। उधर सिरमौर की उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि मॉनसून की वर्षा से जिले में अब तक करीब 16 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
1: जो हमारा अभी नुकसान का स्टेटस है, नाहन के अभी 3 ब्लॉक्स हैं, रोड्स हैं पीडब्ल्यूडी की जो अभी ब्लॉक है, बाकी सारी सब डिविजन की खुली हुई है और सारे हमारे NH ओपन है। इसके अलावा कोई भी DTR अफेक्टेड नहीं है और जल शक्ति की भी सारी जो वाटर स्कीम्स है वो अफेक्टेड नहीं है, सारी रिस्टोर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 जून से लेकर 19 जुलाई तक का जो नुकसान हुआ है वो 16,98,87,000 का हुआ है और इसमें जो टोटल डेथ्स हुई है वो 8 हुई है।
0: भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल के AI उन्नयन को डिजिटल भारत की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने लोकसभा में कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में करीब 7,500 पद भरने को दी मंजूरी। आशा वर्करों और नंबरदारों का मानदेय बढ़ा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की 2 नई किस्मों को केंद्र सरकार ने खेती के लिए किया अधिसूचित। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से प्रदेश में बना अराजकता का माहौल। प्रदेश सरकार के आउटसोर्स भर्ती के नए नियमों की भाजपा ने की आलोचना, बेरोजगारों के हितों के खिलाफ बताया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों में 5 जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट, 4 जिलों में कल भी बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: 91.2 MHz पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि समाचारों के एकदम बाद हमारे कार्यक्रम का भी समय जो है वो समाप्ति की ओर चलने लग पड़ता है। तो घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं मुझे कि आपसे ले लूं इजाज़त। और जाने से पहले कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा कर जाएंगे श्रोताओं, मुकेश की आवाज़ में हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत लीजिए सुनिए। और इस गीत के साथ ही आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को आज के इस कार्यक्रम को संपन्न करने की दीजिए इजाज़त।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचिन है।
2: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
2: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन एप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
4: सुनो, मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हुआ हूँ।
5: एक हफ्ता?
4: हाँ।
5: अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में? ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, दो चार घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापस आ जाना।
4: इतना भरा पूरा परिवार है आपका, दो तीन घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी। अरे बाप रे।
6: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता दूंगा।
7: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
8: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
7: तरक्की?
8: देखो मुन्ना, पहले गाँव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल मोटरसाइकिल,
7: तरक्की।
8: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
9: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
8: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
10: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाई दो।
8: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
7: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
9: अब खुले में शौच नहीं।
11: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम। क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
12: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
11: किससे?
12: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं।
3: क्या बात है यार।
4: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
4: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन एप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
5: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुद्दे स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: एचआईवी कभी न दो। अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
1: एक कदम जिंदगी की ओर।
2: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है, अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
3: सना, मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हो आऊं।
4: एक हफ्ता?
3: हाँ।
4: अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में? ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, 2-4 घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापस आ जाना।
3: इतना भरा पूरा परिवार है आपका, 2-3 घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी।
5: अरे बाप रे।
6: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता दूंगा।
7: क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
8: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
7: तरक्की?
8: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई
7: तरक्की।
8: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
9: तरक्की, यानी अपने घर में अपना शौचालय।
8: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
10: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
8: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
7: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
9: अब खुले में शौच नहीं।
11: सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये।
12: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
11: किससे?
12: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सचू ने
2: 5 यूट्यूब वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा
2: है? हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
2: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
2: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
3: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
2: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
3: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। कोई भी अजनबी अगर आपको ऑनलाइन ऐप्स डाउनलोड करने के लिए कहें तो उसे बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिना पूरी जानकारी के कोई भी वित्तीय लेन देन ना करें और उनकी लालच भरी बातों में तो बिल्कुल ना फंसें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
4: अब उठो, देश के भाग जगाने हैं हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको। अब कोना कोना जगमग जगमग होना ही है, अब ठान के मुट्ठ स्वच्छता की ज्योत जागी है, स्वच्छता की ज्योत जागी है।

0: पर एचआईवी कभी न दूं।
1: अगर आप मां बनने वाली हैं, तो एचआईवी टेस्ट जरूर करवाएं। सरकारी अस्पताल के आईसीटीसी में सलाह और एचआईवी टेस्ट मुफ्त है और गोपनीय भी। बच्चे को एचआईवी से बचाने के लिए जल्द पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है।
2: एक कदम जिंदगी की ओर।
3: जितनी होशियारी करनी है कर लो, जितनी चालाकी करनी है कर लो, जितनी बेईमानी करनी है कर लो, जितनी फरेबी चाल चलनी है चल लो, लेकिन याद रखना जब तुम्हारा कर्म तुम्हारे पास लौट कर आए तो उस समय हैरान मत होना, उस समय परेशान मत होना, उस समय घबराना मत, क्योंकि जो आपने किया है अगर छल किया है, कपट किया है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, तो वो कई गुना होकर आपके पास जब लौटेगा उस समय आश्चर्य मत करना, क्योंकि कर्म की अदालत में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोगना ही पड़ेगा। कर्म के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। जय बिहारी जी के।
4: सना, मैं सोच रही थी एक हफ्ते के लिए मायके हो आऊं।
5: एक हफ्ता?
4: हाँ।
5: अरे इतने दिन क्या करोगी मायके में? ये तो तुम्हारा मायके रहा। एक काम करो, मैं तुम्हें सुबह ले चलूंगा, दो चार घंटे लगाना, शाम को मेरे साथ वापिस आ जाना।
4: इतना भरा पूरा परिवार है आपका, दो तीन घंटे में सबकी बुराइयां हो जाएंगी।
6: बस मास्टर जी, अब आप बेफिक्र रहिए, मैं गांव में सबको बता
7: दूंगा। क्या हो रहा है मास्टर जी, काहे बुलाए हमका?
8: तरक्की का हिस्सा बनाने मुन्ना।
4: तरक्की?
8: देखो मुन्ना, पहले गांव में रही बैलगाड़ी, फिर आई साइकिल, मोटरसाइकिल, टीका आई।
7: तरक्की?
8: हाँ, पर अब भी लोग जाते हैं खुले में शौच करने, तो हमें कहाँ अपनाना चाहिए?
9: तरक्की यानी अपने घर में अपना शौचालय।
8: सही जवाब। और अब तो शौचालय बनवाने के लिए जरूरतमंद लोग 12,000 रुपए की सहायता राशि भी प्राप्त कर सकते हैं।
10: भाई मुन्ना, अब तुम भी अपना नाम लिखवाए दो।
8: इस योजना का लाभ उठाने के लिए आज ही अपनी ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
7: अपनाए तरक्की की सोच नहीं,
9: अब खुले में शौच नहीं।
11: मैं नहीं करूंगी आज के बाद तुम्हारा कोई काम। क्यों सुबह से मुंह फुला के घूम रही है ये?
12: मेरी बीवी को पता चल गया मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
11: किससे?
12: वो मुझे भी नहीं पता, वो बस इसे ही पता है, रात को सपने में देखा था ना।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।